एक बजे तुसी एंजॉय करोगे हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम मिड डे मेलेडीज दे विच। मेरे जिहड़े दोस्तां नूं शायरी बहुत पसंद है उन्हां लई 2 बजे प्रोग्राम पेश कीता जाएगा दिल आज शायर है। ठीक 3 बजे तुसी प्रोग्राम एंजॉय करोगे रेडियो डॉक्टर। शामी 4 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम हैलो जलंधर। युवा दोस्तां दा प्रोग्राम युववाणी तुसी सुनोगे शामी 5-6 बजे तक। तुहाडे चेहरे ते मुस्कान लै के आएगा प्रोग्राम लव यू जिंदगी ठीक शाम 6 बजे। पंजाबी ते हिंदी फिल्मां विच तुहानू लै चलांगे 7:02 ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे जरिए। रात 8:02 ते तुसी प्रोग्राम एंजॉय करोगे इनफो टाइम्स। मैसेजेस बेस्ड फरमाइशी प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच तुसी अपने हिंदी ते पंजाबी सॉन्ग्स दियां फरमाइशां भेज सकदे हो ठीक 9:02 ते। दिलां नूं ठंडक पहुंचाएगा शामी गजल प्रोग्राम 10 तो लैके 10:30 तक। साढ़े 10 तो 11 तक तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। ते FM न्यूज हेडलाइंस तुसी सुनोगे आपो अपने टाइम ते। इह सन साढ़े अज तक ते प्रसारित होण वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। ते लो हुण सरवण करो भक्ति रस्ता प्रोग्राम वंदना।

तुम करो दया मेरे साईं, ये सिर्फ लफ्ज नहीं हैगे बल्कि एक अजिही अरदास है जो साढ़े भटकते हुए मन नूं सकून ते सही रस्ता दिखाउंदी है। जदों असी अपने परमात्मा नाल गल करदे हां, जदों उस साईं दी रहमत दी नज़र हुंदी है तां हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर रास्ता लगता है कि बस ये रास्ता हुण पार हो ही जाएगा।

केंद्र सरकार ने घुसपैठ ते होर कारना करके जनसंख्याई तब्दीली दियां चुनौतियां नाल नजिठण लई एक उच्च पदरी कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोना राही नशीले पदार्थां अते हथियारां दी तस्करी नूं रोकण लई अगले 6 महीनियां दे अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करन दी प्रक्रिया विच है। पंजाब विच शहरी स्थानक संस्थावां दीआं 103 नगर पालिकावां दीआं चोणां लई पोलिंग कुछ थावां ते गड़बड़ियां नूं छड्ड के अमन अमान मुकम्मल। भारत ने चीन अते पाकिस्तान दे सांझे बयान विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधित बेलोड़ियां टिप्पणियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द करन कर दिता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे 3 दिना सिक्किम दौरे दा अज दूजा दिन है। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE दे भुगतान सिस्टम नूं बेहतर बनाउण लई जनतक खेतर दियां 4 प्रमुख बैंकां दे सीनियर अधिकारियां नाल वेरवे सहित चर्चा कीती। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने सरहद पारो गैर कानूनी हथियारां दी तस्करी करन वाले मॉड्यूल दा पर्दाफाश कर दिया, एक सप्लायर नूं असले समेत गिरफ्तार कीता। भारत ने वियतनाम विच एशियन अंडर 23 कुश्ती चैंपियन

दिल से निकले दुआ ये हमारी, हर सुबह हो खुशियों से भरी तुम्हारी, जिंदगी में आए सिर्फ प्यार के रंग, जुड़े रहो FM रेनबो के संग। तो से ट्यून कीता है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम शुरू हो गए जी। तुहाडा सारिया दा फेवरेट प्रोग्राम। चलो जी, सवेर दी किरण नाल साडा भी हो गया चमकन दा टाइम FM रेनबो, ते मूड भी है प्राइम, जिथे नॉलेज भी मिले ते मस्ती भी साथ। शुरू हो गया जी प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग जालंधर, हर दिन एक नवी बात। तो चलो जी शुरू करते हैं आज दे प्रोग्राम नू। तो हाडी अपनी दोस्त महक आ गई है, ते हुण प्रोग्राम भी महकेगा, आड़ा दुआला भी महकेगा, पर महकाउण दे लई मेरा साथ तुहानू देना पएगा, ते साथ देण लई जी तुहानू उठना पएगा। तो लो जी दोस्तों, उठ जाओ क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग जलंधर।

उठ जा जिद्दी रे, रात की चांदनी से मांगता हूँ सवेरा, फूलों की चमक से मांगता हूँ रंग गहरा। मुझे नहीं चाहिए दौलत और शोहरत, हर सुबह बस चाहिए साथ तेरा। साथ सानू उदो चाहिदा हुंदा है ते मैं तुहाडे नाल आ गई हां जदों सानू लगदा है जी डर, ते डर लगदा है सारियां नूं। तुहानू वी लगदा होएगा हुणे तुसी सो रहे हो, या फिर उठ गए हो, या फिर तुसी सोच रहे हो कि यार अज पूरे दिन दे विच किन्ना काम कर रहा है, किहड़े किहड़े चैलेंजेस मैं फेस करांगा। ये गल भी है, जिहड़ी चीज़ तो सानू सब तो ज़्यादा डर लगता है ना, उही चीज़ सानू कुछ ना कुछ सिखा के चली जाती है, सानू स्ट्रोंग बना के चली जाती है। यानी कि देयर इज नथिंग टू फियर, क्योंकि जदों तुसी अपने घर तो उपर लाइक अपने डर तो उपर उठ जाते हो ना, तो फिर उही चीज़ तुहानू इदां लगदी है यार है मैं इहदे तो डरदा पिया सी। कॉन्फिडेंस होर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जेकर अज तुहाडे नाल कोई चैलेंज है, कोई टेंशन है, या कोई नवी बिगनिंग का डर है, कोई नवी शुरुआत का डर तुहानू सता रहा है, तो बस एक गल याद रखो, रब नू तुहाडे ते बहुत भरोसा है, रब ने तुहानू प्रॉब्लम तो वड्डा बनाया है। सो अज दी इस मॉर्निंग नू पॉजिटिव वाइब्स दे नाल स्टार्ट करो, स्माइल करो, कॉन्फिडेंस रखो, ते अपने आप नू कह दो मैं कर सकदा हां, ते मैं किसी चीज़ तो नहीं डरता। तो चलो जी, लैके प्रभु दा नाम सी स्टार्ट करते हैं अपना अगला ट्रैक, ते इस ट्रैक तो बाद मिलते हैं। आई होप उदो तक तुसी उठ गए होंगे। तो लो जी, प्रोग्राम चल रहा है जी, गुड मॉर्निंग जलंधर, मिलते हैं इस गीत दे उस पार।

गर्म करते हो ना उसी तरीके दे नाल तुसी तवा गर्म करना है। हुण जदा अपने बॉस नूं मक्खन लांदे हो ना उसी तरीके दे नाल तुसी बस तवे ते की लाना है जी, घ्यो लाना है या तेल लाना है, थोड़ा जिहा गोल्डन कर लो, फिर उस तो बाद हेल्दी हेल्दी तुहाडा ब्रेकफास्ट जिहड़ा ना वह रेडी हो जाएगा। नाल एक ग्लास तुसी जूस पियो या पियो ग्रीन टी या फिर तुसी मॉर्निंग दे विच नहीं पीना कुछ भी, तो लो जी हेल्दी हेल्दी साडा हैगा एक होर ड्रिंक, अदरक दा जेड़ा तुसी थोड़ा जिहा अदरक नूं निचोड़ के उन्हूं यानी गर्म करके उहदे विच तुसी हनी पा के ते नींबू पा के तुसी वह भी पी सकते हो, हैल्दी रहेगा ते तुहाडा मूड भी फ्रैश रहेगा। सो ये सी तुहाडी अज दी मॉर्निंग दे लई ब्रेकफास्ट दी रेसिपी, तुसी बना सकते हो, मम्मी नूं दस सकते हो ते आप भी खा सकते हो बना के, बट इन्ना क्रम तुहाडे तो हुंदा नहीं। चलो कोई गल नहीं, अगला गीत सुनते हैं, देखते हैं हुण तुसी बनाओगे या नहीं बनाओगे। या फिर तुहाडा दिमाग भी सुन के डिंग डेंग करन लग पिया है।

क्यों तमन्ना मेरी के सुकून मैनू मिल जावे। अजकल हर कोई यही चाहता है कि उसकी जिंदगी दे विच ना सुकून होवे, पर उदे उल्टी है। साड़ी जिंदगी दे विच टेंशन ने, साड़ी जिंदगी दे विच ओवर थिंकिंग है, ते असी ओ इंसान आ जिहड़े सोचदे आ कि अज असी पूरे दिन दे विच कितनियां गल्लां करनियां ने, कितनियां गल्लां सुननियां ने। रात नूं तुसी सोंदे हो, असी ओ इंसान आ ना, रात तो सोण तो पहला असी ओवर थिंक करदे आ, मॉर्निंग उठन तो पहला भी सुपने दे विच असी ओवर थिंक ही करदे आ, सवेरे उठ के शीशे दे विच वेखदे आ ना असी तद भी ओवर थिंक ही करदे आ। कई बार सानू इदा भी फील होंदा है कि अचानक ना दिल की धड़कन जिहड़ियां ने वह तेज़ हो गई ने, साडे जिहड़े साह ने वह काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए ने, ते लगता है जिवें सब कुछ कंट्रोल तो बाहर हो गया है, हुण मेरे कंट्रोल विच कुछ भी नहीं है। ते ये हो सकता है दोस्तों पैनिक अटैक। पैनिक अटैक एक इमोशनल ते फिजिकल रिएक्शन होंदा है जदों स्ट्रैस, डर या ओवर थिंकिंग अचानक

0: FM बैन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल है। हुन तो कुछ ही पलां दे विच तुसी सुनोगे पंजाबी च खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवीआं खबरां। केंद्र सरकार ने घुसपैठ अते होर कारणां करके जनसंख्यकी तब्दीली दीआं चुनौतीआं नाल निपटण लई इक उच्च पद्धरी कमेटी दा गठन कीता है। सुप्रीम कोर्ट ने चोण कमिशन वालों वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR दी वैधता नूं चुनौती देण वालीआं पटीशनां ते अज अपना फैसला सुणाएगी। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकावां दे मुलांकण लई वरते जांदे इस ते ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उलंघन नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानिक संस्थावां लई कल होईआं चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज कीती गई है। ते IPL क्रिकेट विच बीती रात पहले क्वालीफायर मैच विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 92 नाल हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्र सरकार ने घुसपैठ अते होर कारणां करके जनसंख्यकी तब्दीली दीआं चुनौतीआं नाल निपटण लई इक उच्च पद्धरी कमेटी बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि कमेटी की प्रधानगी सुप्रीम कोर्ट के सबक जज प्रकाश प्रभाकर न्यौलकर करेंगे। जनगणना कमिश्नर के नाल सबका IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, सबक IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के मैंबर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में एक जॉइंट सकत्र मैंबर सकत्र वजो काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले तो अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्या तब्दीली बारे उच्च पदरी कमेटी के गठन का ऐलान किया।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या तब्दीली एक गंभीर मुद्दा है जो न सिर्फ देश की प्रभुसत्ता सगों राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था समाजिक ढांचे विच डूंघियां तब्दीलियां अते आदिवासी भाईचारे की सुरक्षा नाल संबंधित है। गृहमंत्री ने कहा कि कमेटी गैर कानूनी प्रवास अते होर गैर कुदरती कारण करके भारत विच जनसंख्या च होण वालियां तब्दीलियां का व्यापक मुलांकण करेगी। सुप्रीम कोर्ट चोण कमिशन वालों वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR दी वैधता नूं चुनौती देने वाली पटीशनां ते अज अपना फैसला सुनाएगी। भारत दे चीफ जस्टिस सूर्यकांत अते जस्टिस जोमालिया बागची दी बेंच ने मामले दी सुनवाई तो बाद अपना फैसला राखवां रख लिया सी। पटीशनां विच SIR प्रक्रिया दी वैधता नूं चुनौती दित्ती गई है ते दलील दित्ती गई है कि संविधान दी धारा 326 लोक प्रतिनिधता कानून 1950 अते इस

FM बैन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा FM रेनबो चैनल है ते हुण वेला हो गया है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबक 9 बज गए ने। केंद्र सरकार ने घुसपैठ अते होर कारणा करके जनसंख्याई तब्दीली दियां चुनौतियां नाल निपटण लई एक उच्च पदरी कमेटी दा गठन कीता है। सुप्रीम कोर्ट चोन कमीशन वल्लों वोटर सूची दी विशेष तीबर सोध दी वैधता नूं चुनौती देण वाली पटीशना ते अज अपना फैसला सुनाएगा। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तकावां दे मुलांकण लई वरते जांदे इस दे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानक संस्थावां लई कल होईयां चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज कीती गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सिक्किम दौरे के दूजे दिन अज नाथुला दरे का दौरा करेंगे। अज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू की बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहर लाल नहरू उन्होंने की बरसी से श्रद्धांजलि भेंट की है। भारत ने चीन अते पाकिस्तान दे सांझे बयान विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी बेलोड़ियां टिप्पणियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द कीता है। पंजाब समेत देश दे बहुत सारे हिस्सों विच जोरदार गर्मी पै रही है। मौसम विभाग ने अज उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश अते विदर्भ विच गर्मी अते लू दी पेशनिगोई करदिया रेड अलर्ट जारी कीता है। IPL क्रिकेट विच बीती रात पहले क्वालिफायर मैच विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नू 92 दौड़ा नाल हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ।

0: जी हाँ दोस्तों, तुसी ट्यून की 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से मैं तुहाड़ी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है दिल अपना पंजाबी। देखते हाँ केड़े केड़े दोस्तों का दिल जिहड़ा है वो पंजाबी है, केड़ियां यादां उन्हां नूं याद है, केड़ी गल साडे नाल अज सांझी करनगे। तो चलो जी मैसेज साडे कोल आ गए ने, देखते हाँ कि साडे दोस्तों ने सानू कहा है।
1: ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋੜੀ ਨਿਭਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ,
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

FM News Headlines। केंद्र सरकार ने घुसपैठ ते होर कारना करके जनसंख्याई तब्दीली दिया चुनौतियां नाल निपटन ले एक उच्च पदरी कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट चोन कमीशन वालों वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR दी वैधता नूं चुनौती देने वाली पटीशनां ते अज अपना फैसला सुनाएगा। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकावां दे मुलांकन लई वरते जांदे इस दे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उलंघना नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानक संस्थावां लई कल होईयां चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सिक्किम दौरे के दूजे दिन अज नथुला दुरे का दौरा करेंगे। अज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। भारत ने चीन ते पाकिस्तान दे सांझे बयान विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी बेलोड़ियां टिप्पणियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द कीता है। पंजाब समेत देश दे बहुत सारे हिस्सों विच जोरदार गर्मी पै रही है। मौसम विभाग ने अज उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश अते विदर्भ विच गर्मी अते लू दी पेशनगोई करदियां रेड अलर्ट जारी कीता है। IPL क्रिकेट विच बीती रात पहले क्वार्टर फाइनल मैच विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 92 दौड़ां नाल हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। ईसन FM न्यूज हेडलाइंस ते हुन पेश है प्रोग्राम गीत बहार। पास एक छोटी जी ब्रेक तो बाद।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने

एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने घुसपैठ ते होर कारना करके जनसंख्याई तब्दीली दियां चुनौतियां नाल निपटन लई एक उच्च पदरी कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट चोन कमीशन वालों वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR की वैधता चुनौती देने वाली पटिश

एफएम न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने घुसपैठ ते होर कारना करके जनसंख्याई तब्दीली दियां चुनौतियां नाल निपटन लई एक उच्च पदरी कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट चोन कमीशन वालों वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR की वैधता चुनौती देने वाली पटीशनां ते अज अपना फैसला सुनाएगा। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकावां दे मुलांकन लई वरते जांदे इस दे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उलंघना नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानक संस्थावां लई कल हुई चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सिक्किम दौरे के दूजे दिन अज नथुला दुरे का दौरा करेंगे। अज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू की बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नहरू नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट की। भारत ने चीन ते पाकिस्तान के सांझे बयान विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी बेलोड़ियां टिप्पणियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द किया है। पंजाब समेत देश के बहुत सारे हिस्सों में जोरदार गर्मी पै रही है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश अते विदर्भ विच गर्मी अते लू की पेशनगोई करदिया रेड अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट विच बीती रात पहले क्वार्टर फाइनल मैच विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नू 92 दौड़ा नाल हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। ईसन FM न्यूज हेडलाइंस ते हुन पेशे प्रोग्राम पंजाबी तड़का बस इस ब्रेक तो बाद।

0: स्कीम दे टैलीलॉ न्यायबंधु कानूनी साक्षरता ते जागरूकता प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैलीलॉ ते टोल फ्री नंबर 1-44-54 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का ते अगले दोस्त साडे कोल पहुंच गए ने। हेलो,
3: वड्डियां दी सदा इज्जत करनी, झूठी गल कदे ना करनी,

एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने घुसपैठ अते होर कारण करके जनसंख्याई तब्दीली दियां चुनौतियां नाल निपटन लई एक उच्च पदरी कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट चोन कमिशन वालों वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR दी वैधता नूं चुनौती देने वाली पटीशनां ते अज अपना फैसला सुनाएगा। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकावां दे मुलांकन लई वरते जांदे इस दे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उलंघना नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानक संस्थावां लई कल हुईयां चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज कीती गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सिक्किम दौरे दे दूजे दिन अज

CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकावां दे मुलांकन लई वरते जांदे इस दे ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विच कोई सुरक्षा उल्लंघना नहीं हुई। पंजाब च शहरी स्थानक संस्थावां लई कल हुईयां चोणां च लगभग 64% पोलिंग दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सिक्किम दौरे के दूजे दिन अज नथुला दुरे का दौरा करेंगे। अज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट की। भारत ने चीन अते पाकिस्तान दे सांझे बयान विच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी बेलोड़ियां टिप्पणियां नूं स्पष्ट तौर ते रद्द कीता। पंजाब समेत देश दे बहुत सारे हिस्सों विच जोरदार गर्मी पै रही है। मौसम विभाग ने अज उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश अते विदर्भ विच गर्मी अते लू दी पेशनगोई करदिआं रैड अलर्ट जारी कीता है। IPL क्रिकेट विच बीती रात पहले क्वार्टर फाइनल मैच विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 92 दौड़ां नाल हरा के फाइनल विच जगह बना ली है। एसन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस ते हुण पेश है प्रोग्राम होम स्वीट होम। बस इस ब्रेक तो बाद

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: मतलब सबदा स्पैम कट जाएगा।
1: हाँ, रिपोर्ट मिलते ही एक्शन होता है।
2: सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, तो रिपोर्ट करना शुरू करो।
3: वेलकम बैक। 12:31 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, मिठा कर मिठा। आहा, यही कहते हैं होम स्वीट होम नू पंजाबी च, हुण होर की कहते हैं, है ना। होम स्वीट होम कहते हैं मतलब घर मिठा घर, ज़्यादा मिठा हो गया। वैल, मिठा तो सेहत लिए हानिकारक होंदा ही है, ये सारे नू पता ही है। पर तुहानू पता है कि जिहड़े किचन दे विच कॉकरोच आंदे ने उन्हां नू भी मिठा पसंद होंदा है। बस असे इत्थे ही उन्हां नू फसा देना है। किद्दां? हुण सुनो ध्यान नाल। बेकिंग सोडा जो तो बेस्ट हैगा, खाने दे विच भी टेस्टी हुंदा हैगा है, ते बाकी कीड़े मकौड़े भजाउण नू भी बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद हुंदा है। सो बेकिंग सोडा लेना है, उहदे विच तुसीं थोड़ी जिही चीनी पानी, मतलब बराबर मात्रा दे विच दोनों चीज़ां लैणी है, खंड एंड उहदे नाल बेकिंग सोडा। खंड इज़ शुगर। सो इन्हां दोनों नू बराबर मात्रा च लै के इन्हां दा एक घोल तैयार करना है। बस उह जिहड़ा घोल हैगा किचन दे विच किते किते कोणियां च पा देना। सारी सारी किचन च नहीं पाना, मिठा मिठा हो जाना। वैल, जिथे जिथे तुहानू लगता है सिंक दे थले हो गया, या फिर जिहड़ी कई शेल्फ्स हुंदी है, ड्रॉअर्स हुंदे हैगे आ, किते कोणियां दे विच हुंदा है, उत्थे थोड़ा थोड़ा ये पा देना हैगा स्प्रे। उहदे नाल होएगा कि कॉकरोच बड़े खुश हो के आणगे, वी वाह जी वाह, अज तां दावत लगी हुई है मिठे दी। पर उहनां नूं ये नहीं पता मिठे दे विच ट्विस्ट पा दित्ता है असीं बेकिंग सोडा। बस उन्हों सुन के उन्होंने भज जाना हैगा। सो जो कॉकरोच ने उन्होंने यदि स्मैल जी बहुत ज़्यादा तिखी लगती है, जिद करके वो भज जाते हैं। उन्होंने समझ आ गया कि भी जाल फसात जाल च फसाता है इन्होंने सानू, अपने आप जोड़े कॉकरोच ने वो बाहर निकल जाएंगे। एक होर चीज़ हो सकती है, वह है तेज़ पत्ता, बेलीफ जिन्हों कहते, थोड़ा जहा पाउडर बना के रखो पत्तियां दा, ते वो पाउडर भी कॉर्नरस विच पा सकते हो जिहदे नाल कॉकरोचेस नहीं आणगे। क्योंकि जदों सवेरे सवेरे उठो किते ना किते जिन्नी मर्जी सफाई रख लो फिर भी किते ना किते ना कुछ निकल के आ ही जांदा हैगा। सो हो सके ते रात नूं जिहड़ा डस्टबिन हैगा वो खाली करके जरूर सोना चाहिए हैगा, क्योंकि जिथे थोड़ा बहुत खाना वगैरह रह जाता है या शैल्फ तुहाडी गंदी रह जाती किते मिठा लगा कुछ, क्योंकि अजकल गर्मियां दा मौसम है, नींबू पानी या फिर शरबत वगैरह तो बनाते ही रहिंदे आं असीं, ते किते ना किते कुछ ना कुछ मिठा लगा रह जांदा है, ते फिर कीड़ियां भी आ जांदियां सैर करदियां, ते नाले भी आ जांदे ने। सो बेस्ट यही हैगा है कि सफाई रात नूं करके, सो वो जिहड़ा कॉकरोचां नूं भजाना है ते तुसीं बेलीफ तेज़ पत्ता उहदा पाउडर बना के कॉर्नरस विच पा सकदे हो, इहदे नाल ओह भज जाणगे। एंड कदी कदी हो सके ते ना एक स्प्रे रेडी कर लो, पर ऑल परपज़ क्लीनर इहनूं असीं कह सकदे हैगे आ, जिहड़ा कि असीं कई वारी कैमिकल्स बाहरों लैके आने ना स्प्रे वालियां बॉटलां, नीले रंग दा है ना, नीले रंग का स्प्रे बॉटल च आता है, होर भी अलग अलग रंगा दे आते हैं जिन्हें ना स्प्रे करो तो सारा किचन क्लीन हो जाता है। सो बेस्ट यही है थोड़ा जहा कोसा पानी लो, उस बराबर मात्रा दे विच, एक कप कोसा पानी लै रहे हो तो एक कप सिरका लेना है, उन्होंने मिक्स करो, वो थोड़ा जहा लिक्विड सोप पा लो, तो हल्का जहा नींबू भी तुसी पा सकते हो, एंड वो नाल तुसी पाना है बेकिंग सोडा। मैं कहता पहला, चलो बेकिंग सोडा नाल ही नाल सिरका नाल ही नाल पानी ते थोड़ा जहा नींबू, ते जो भी तुहाडा लिक्विड हैंड वॉश हुंदा है या कोई भी जिहड़ा तुसी घर रख्या हैगा सफाई करन दे लिक्विड सोप, उहदे विच पाणा, इहनू शेक करो, एंड तुहाडी स्प्रे रेडी है। क्योंकि जदों असीं बाहरों कैमिकल्स लैके आने अपनी किचन की शेल्फ ते उहनू पाने आ, उहदा किते ना किते कैमिकल इफेक्ट तो रह ही जांदा है। सो एक घर दा बणिया होया ऑल परपज क्लीनर तुसी यूज़ कर सकते हो, इहदा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हैगा। देखिया, मैं क्या सी ना नोट करने वाली गलां दसूंगी तुहानू, मैनूं पता तुसी नोट कर लिया हैगा, ते नाल नाल इंजॉय भी कर लो गीत हुण हरभजन मान दी आवाज़ विच।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

ओट्स, नारियल का दूध, दालचीनी पाउडर, खजूर एंड अखरोट के नाल पानी, सारिया चीज़ा ले लिया। हूँ इनू बनाना किस तरीके दे नाल है वह मैं तुहानू दसूँगी इस गीत तो बाद। तो मैं सोच रही है एक इंस्टेंट रैसिपी भी तुहानू दसा इस रैसिपी तो बाद। इंस्टेंट है इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट बनन वाली होएगी, है ना। तो फिलहाल दी कड़ी ओट्स डेट पुडिंग जिहड़ी है वह किद्दां बनानी हैगी है वह मैं तुहानू दसूँगी। समगरी तुहानू मैं लिखवा दित्ती है, हुण वेट करो, गीत सुनो, दैन उस तो बाद दसूँगी इनू बनाना किस तरह है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक।

वेलकम बैक। टाइम हो रहा जी 1:16। प्रोग्राम चल रहा है मिडडे मेलोडीज, तुहाडे अपने फेवरेट चैनल्स 102.7 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो ते ते नाले नाले 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते। ते मैं इंद्रप्रीत सिरा। ब्रेक ते जान तो पहला जरा गीत इंजॉय किया, फिल्म का नाम सी शान। तो गीत नूं आवाज़ दित्ती सी किशोर कुमार, आशा भोसले, ऊषा मंगेशकर ते मुहम्मद रफ़ी ने। तुझसे इश्क करके आशिकाना हो गया हूँ, तुझसे इश्क करके आशिकाना हो गया है, दिल ना पूछो ये दीवाना हो गया है। तुझको जब से नज़रें भर कर देखा है, तुझको जब से नज़रें भर के देखा है, ये मौसम और भी मस्ताना हो गया है।

0: चोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम

जी दोस्तों, समय इजाजत नहीं दे रहा कि प्रोग्राम नू अगे वधाया जावे। सो अगला गीत जरा प्ले करन लगी हाँ, फिल्म का नाम है कुर्बानी। आवाज़ दिती है इस गीत नू कंचन ते अमित कुमार ने। सो इस गीत दे नाल मैनू दे दिओ इजाजत प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज इत्थे खत्म करन दी। सो दिस इज़ योर आरजे इंद्रप्रीत सेरा सेइंग यू बाय बाय एंड टेक केयर।

वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, आय है क्या बात है दोस्तों। वेल दोस्तों, साढ़े श्रोत्या ने बहुत कुछ भेज दिता है, बहुत सारे मैसेज जा चुके ने। सब तो बोला राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिल्लिया सुल्तानपुर लोधी तो लिखते ने कि हादसों के शहर में फिरता है जो हंसता हुआ, हादसों के शहर में फिरता है जो हंसता हुआ, क्या दबा क्या रहा अंदर है जो किस कदर टूटा हुआ। सूरत बदल गई है तो हैरान ना कीजिए, सूरत बदल गई है तो हैरत ना कीजिए, हम हादसों के शहर में रहते हैं दोस्तों। क्या बात है जी, बहुत सुना लिखे राम स्वरूप जी। राम स्वरूप जी स्वरूप आई थिंक लगता है डॉक्टर ने, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग, समझ गए होंगे दोस्तों कि राम स्वरूप जी की जो हैंड राइटिंग है ना, एज ए डॉक्टर वर्गी एंड डॉक्टर शायर ने साडे। उस तो बाद लिख रहे ने लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी लिख रहे ने कि दिल दे बाजार विच दौलत देखी नहीं जाती, आए हाय हाय क्या बात है जी। वो कहते ने दिल दे बाजार विच दौलत देखी नहीं जाती, मोहब्बत हो जावे ता सूरत नहीं देखी जाती, जद एक ही व्यक्ति दे उपर लुटा दिता है सब कुछ अपना, जद एक ही व्यक्ति दे उपर सब कुछ लुटा दिता है अपना, क्योंकि पसंद है ता कीमत नहीं देखी जाती, आए है क्या बात है जी, क्या बात है। राकेश कुमार जी कमाल ही करते तुसी। अथवा साडे होर दोस्त लिख रहे ने सत श्री अकाल दिल शायर विच रमनीश जी बलविंदर सारा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे ने कि चलिए हवा इश्क की आंधी तूफान का आना अभी बाकी है, चलिए हवा इश्क की आंधी तूफान का आना अभी बाकी है, छा गए हैं बादल दिलों पर, छा गए हैं बादल दिलों पर, बरसता बरसात का आना अभी बाकी है, मुस्कुरा लिया देखकर उनको यूं ही, मुस्कुरा लिया देखकर उनको यूं ही, उनका मुस्कुराना अभी बाकी है, अभी तो मिली है बस नजर से नजर, जान पहचान ता अभी बाकी है। क्या बात है जी, बहुत मजा आ रहा है ऐसी पढ़ के, बलविंदर सरा जी कमाल करती, बहुत मजा आ रहा है। मैं जानता सी अच्छा इमेजिन कर रहा सी नाल नाल ना एक सीन बन रहा हुंदा ना, जिद्दां असी किसे दी जदों स्टोरी पढ़दे हुंदे अच्छा किसे दी गल भी सुनदे हुंदे ना, ते इदी सेम है इहनां दी लिखावट तो सानू चीज़ महसूस होई है दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है जी। वैल साडे दोस्तां नूं मैं एक जरूर बेनती करूँगा कि अगर अपनी खुद की शायरी लिख देने तो बेस्ट है, अगर किसी की शायरी जो भेज देना दैन मैनशन उन्होंने नेम जरूर करन, क्योंकि ये बहुत ही चंगी गल होगी। वैसे एक साढ़े दोस्त ने भेजा है वैसे गली अफीम वाली प्रेम मार्केट बठिंडा, अमरजीत संघ अमरजीत जसल यानी कि उर्फ चूची लिख रहे ने, उन्होंने नीहू के नाम तो एक राइटर तो भेजा है कि खुश रहा करो उन्होंने लिए जो थानू खुश नहीं देखना चाहते, आए नाराज़ लग रहे हो अपने अमरजीत जी, ये तो गल है। वैसे चलो ठीक है, देखो कुछ चीज़ा होंदिया ना सानू अपने आप नू एक दब के रखनी पैंदी अंदर, लाइक ये नहीं कह रहे कि तुसी उस चीज़ नू अपने अंदर दबा के रखो तो सहन करो, कुछ चीज़ा इधर ही होंदिया दोस्तों।

0: दोस्तों तो सुन रहे हो 102.7 FM बैंड। वेल असी गल कीती ही दोस्तों एक ऐसे शख्स दी कि अपां अगर कहिंदे ना कि अगर किसी जो गज़ल लिखते हैं पोइट्रीज लिखते हैं उन्होंने हू बहू गलबात करन दा मौका मिल जाए तो उन्होंने पूछ लिए कि असल च यह गज़ल की है, असल च पोइट्री की है, तुहाडे लई की है, तो मज़ा ही आ जाए। दोस्तों इसी तरीके नाल साडे नाल जुड़ चुके ने दोस्तों साडे एक एज ए गैसट जिन्हों का नाम साहिल है, तो वह बहुत ही वधिया गज़ल लिखते हैं, तो वह मेरे नाल बस आ चुके ने ऑन एयर। हैलो
1: जी, खराब सर,
0: की हाल है सर? साहिल जी
1: मैं

0: बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं सर?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सब तो पहला थोड़ा बहुत बहुत स्वागत कर दें थोड़ा FM रेनबो विच।
0: जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया और सबका इस्तकबाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जिवें कि कहिंदे ना दिला शायर प्रोग्राम चल रहा है, ते ना शायरी दी गल ना होवे ते मज़ा नहीं होगा सर। सब उस तो पहले ना मैं पूछना चाहूँगा कि सर तुसी असल च की लिखना पसंद करते हो ते थानू केड़ी चीज़ का ज़्यादा शौक है?
0: जी, वैसे पोइट्री में बहुत सारे फन आते हैं, विधाएं आती हैं, लेकिन मेरा जो मैं चाहता हूं और मेरी दिली ख्वाहिश भी होती है कि एक ऐसा फन जो गजल होती है, शायरी होती है,
1: जी
0: इसमें कम अल्फाज में अपनी बात कही जा सकती है, मैं उसी विधा में लिखना पसंद करता हूं।
1: अच्छा जी। सर जिवें कि गज़ल दी गल कीती आ, एक तां हुंदा ना गज़ल जदों आपां लिखदे आ ते ना साडे एक हमेशा आपां ना किसे नूं फॉलो जरूर करदे हुंदे कि सानूं आ बड़े पसंदीदा लगदे ने। सर तुहाडे कि कहिड़े पसंदीदार सब तो सख्श ने?
0: ऐसे कोई एक शायर नहीं है, लेकिन बहुत सारे शायर हैं जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो एक शायरी की बात होती है, वो कहते हैं कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते हैं, है ना, ये हमारे दिल की एक हैंड राइटिंग है एक्चुअली, है ना,
1: अच्छा
0: जिसे
1: जी
0: जबान पढ़ती है और रूह समझती है।
1: जी
0: और शायरी कहा भी जाता है कि इसमें सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, इसमें बगावत भी होती है, बारिश भी होती है, मतलब बहुत सारी बातें एक आम इंसान नहीं कह पाता है, तो शायरी उनको लफ्ज देती है।
1: जी
0: अब जैसे
1: सर
0: एक आम इंसान कहता है कि मुझे आ, आ, ये कहता है कि यार मैंने आपको दिल दे दिया है ना, तो
1: जी
0: लेकिन जब शायर एक शेर में कहेगा, वो ये कहेगा कि आप दिल पर बादशाहत कीजिए, आपको ये राजधानी सौंप दी,
1: है क्या
0: तो
1: बात
0: इस
1: है सर।
0: तरह से
1: है
0: शायरी चलती है। जी
1: नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन आ रहा था इसी पे ही कि हम कहते हैं ना कि हम अपने एक्सपीरियंस से ही एक शायर बनते हैं, कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके ही बारे में लिखते हैं। ऐसा भी होता है कि सर इसके अलावा भी हम दूसरों की कहानी भी समझ कर उनको ऑब्जर्व करके उसके बारे में भी लिखते हैं?
0: अरे बेशक सर, शायरी उसी विधा का नाम है। देखिए, जब एक शायर लिखता है, वो एक अलग अलग बात है, पहले उसके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, खुद के दर्द होते हैं, खुद की खुशियां होती हैं, लेकिन उससे ऊपर एक शायरी का पीक आता है जब आप एक पेड़ से पत्ता टूटता है, एक फल गिरता है, या किसी परिंदे को पिंजरे में देखता है, तो ये बहुत सारे पेन है एक शायर खुद महसूस करता है, और वो जो करेक्टर है वो खुद में फील करके ही उन चीजों को लिख सकता है।
1: क्या बात है सर, क्या बात। सर बेसिकली सर इसी मूड में, वैसे तो मैं कहूँगा इसी मूड में ना आपकी कुछ लिखी हुई अगर हमें गज़ल या कोई पोइट्री सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए सर।
0: जी, एक तस्वीर पे मैं आपको एक गजल
1: जी
0: सुनाता हूं कि सुकूने जहां का बाइस है मेरी खातिर तेरी तस्वीर, कभी रोने नहीं देती तेरी हंसती हुई तस्वीर, तुम्हारा
1: आय हाय हाय क्या बात है सर।
0: बोलना सुनने से ज्यादा देखता हूं मैं, तुम्हारा बोलना सुनने से ज्यादा देखता हूं मैं, कि मुझको खींचनी होती है हर एक लफ्ज की तस्वीर।
1: आय हाय हाय क्या बात है
0: अरे
1: सर, क्या।
0: एक और शेर सुनाऊंगा
1: जी
0: इसमें
1: जी
0: मैं, कि
1: इरशाद
0: हर एक
1: सर।
0: तस्वीर में मैं इसलिए भी मुस्कुराता हूँ, हर एक तस्वीर में मैं इसलिए भी मुस्कुराता हूँ कि वो तस्वीर हो सकती है मेरी आखिरी तस्वीर।
1: अरे बाप रे, क्या कमाल कर दी सर, कमाल। ये तो ना मतलब तीर ही मार दिया आपने सर हमारे
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: मतलब
0: बहुत
1: जरूरतों
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया।
1: सर आखिरी क्वेश्चन सर एक पूछना चाहूँगा, जैसे ना हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं ना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि असल में शायर है कौन? शायर जो लिखते हैं वो है कौन असल में, उनकी डेफिनेशन क्या है आपके आपके लिए?
0: देखिए, शायरी की डेफिनेशन और जब मैंने दी है तो वही एक शायर की डेफिनेशन है कि शायरी कुछ नहीं है, बस जो दिल की बात है उसको लफ्जों में बयां करना होता है ना।
1: जी
0: अगर मैं कुछ लाइनों में बोलूं तो जैसे आप 10 पन्नों की चिट्ठी को समझा नहीं सकते किसी को,
1: जी
0: लेकिन एक शायर जो करता है वो 2 पंक्तियां कह के, 2 लाइन कह के, वो मतलब एक मैक्सिमम इम्पैक्ट डालने की जो एक आर्ट होती है वो एक शायर करता है।
1: शेयर कर।
0: मतलब मैं आसान शब्दों में अगर कहूं तो जो दिल का दर्द है या खुशियां हैं, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में नहीं समा पाती है, लेकिन एक शायर है अपनी कुछ बातों में, कुछ मिसरों में उन चीजों को बयां कर देता है।
1: जी, मैं समझ गया सर। जैसे एक हम कोई गाना सुनते हैं चाहे वो 3-4 मिनट का हो, वो जो इतनी लाइनों मतलब जो वो इतनी लाइंस बोलते हैं उसकी बस 2 लाइनों में आप पूरी उसकी पेशकारी कर देते हो, लाइक ऐसे
0: बेशक
1: सर।
0: सर, बेशक।
1: सर बहुत कमाल, अच्छा लगा आपको सुनकर सर। और हम जैसे ना जो ये प्रोग्राम होता है ना, जब जिस मतलब आ जाता है ना सर, एक सुकून आ जाता है कि चलो यार ना सर, आप सुनते हो हमारा दिला शायर प्रोग्राम
0: अरे बेशक बेशक, ये शायराना

0: शायर नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा।
1: अरे सभी पैर वैसे गलत सवाल पूछ ले इस हिसाब से, तो मैंने आपसे क्यों पूछा ये? नहीं आप तो जरूर सुनते होंगे
0: नहीं
1: सर।
0: यार, सभी शायर दोस्त जब हम बैठते हैं तो कई बार इस प्रोग्राम की चर्चा होती है। बहुत उम्दा प्रोग्राम होता है और ये
1: जी
0: ऐसे ही बढ़ता रहे, चढ़ता रहे और हम
1: जी
0: सब इसको सुनते रहे।
1: जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, साहिल सर आपका, आप अपने
0: बहुत
1: एक्सपीरियंस
0: बहुत
1: बताने के
0: शुक्रिया
1: लिए, अपना
0: आपके, सभी
1: तजुर्बा,
0: ऑडियंस का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
0: यू सर।
1: सो सो दोस्तों, तुही सुन रहे हो प्रोग्राम दिला, शायर है ते हुनी असी, जिन्हें गलबात की है बहुत ही कमाल दे, जिन्हें गजल लिखते ने, पोइट्रीज लिखते ने, आई होप तुसी इन्हां दा तजुर्बा भी सुने होना। ते एंड गल की जावे ना एक शायरी दी अंदाज दी, ते एक शायरी दी डेफिनेशन दी, कि जो उन्होंने कहा ना 10 पन्नियां च जो चीज़ लिखी होंदी है शायर दा काम होंदा उसनू 3-4 लाइनां च उस चीज़ नू पूरी तरह समझा देना दोस्तों। वेल आई होप थानू भी पसंद आई होगी चीज़। वैल दोस्तों अगली पेशकारी करते हैं, उस तो बाद अपने स्रोतिया दे असी मैसेज पढ़ांगे ते एंड उन्हां नाल भी आपां कनैक्ट करांगे।

आय हाय, क्या जमाना था कि हम, क्या जमाना था कि हम रोज मिला करते थे। क्या बात है यार, मजा आ गया सुन के। वेल, साडे सरोत्या ने सानू भेजा है। सब तो पहला साडे सरोते ने इन्हों ने नाम मैनशन नहीं किया, पर फिर भी सानू इन्हों का नाम पता है। सुखदेव सिंह लखनपाल जी। सुखदेव सिंह लखनपाल जी की लिख रहे ने, जरा पढ़ के देख रहे हैं जी। कल शीशा था, कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। हाय हाय, क्या बात है जी। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। क्या बात है सर। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। और भी उन्होंने लिखा है, लिख रहे ने कि इस रंग बदलती दुनिया में देखे रंग बधेरे ने। अच्छा जी, बधेरे ने। इस रंग बदलती दुनिया में मैं

देखे रंग बधेरे ने, सब तेरे मुंह ते तेरे ने, ते मेरे मुंह ते मेरे ने। क्या बात है सर। ये तो है दोस्तों। हाँ देखो दोस्तों, असी ना हमेशा सोचते होंगे कि पॉजिटिव रहो। वैसे तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि ना सानू ना बहुत गल्लां ना दिल में नहीं लानियां चाहिए दोस्तों। क्योंकि सब तो पहला अगर जो जेकर तुसी अपने आप में प्यार करते हो ना दोस्तों, तो अपने आप में तकलीफ ना देवो दोस्तों, तो अपने आप में नाजुक भी ना बनाओ, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंसान, एक अच्छे इंसान, तो अपने लिए हमेशा सही बोलने वाले इंसान बनो दोस्तों। और तो बाद लिख रहे ने, नमस्कार मेरी शायरी आवारगी। अच्छा मेरी शायरी, ओके। लिख रहे ने कि आवारगी चाहते हो तो प्यार कीजिए, इश्क को जानना चाहते हो तो महबूब के रुस्वा होने का इंतजार कीजिए। क्या क्या बात है जी। नामगुर की भराड़ीवाल, भराड़ीवाल मेरे गांव का नाम है, जिला अमृतसर पंजाब। बहुत बहुत स्वागत है साडा जी। उस तो बाद साडे होर दोस्त ने बहुत सारे सानू पेस दिनिया चीज़ा, ते असी भी जदों प्रोग्राम पढ़ रहे थे तो बहुत सारिया फोटोज़ सानू, मैं दोबारा रिपीट करता दोस्तों, हमेशा कोई अच्छे शायर, ते तुसी जो लिख रहे हो, तुसी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी कविता जरूर सांझी करो, असी जरूर पढ़ांगे। तो बाद सानू एक आई है मोहम्मद मुजफ्फर अरमान पेंट खरूड जिला मलेरकोटला तो सानू भेजा है कि कहते ना, कभी कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में इतनी खामोशी से आता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और फिर वही इंसान हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। वो भी मेरी ज़िंदगी में ऐसी ही आई थी। पहले बस थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, फिर उसकी आदत हो गई। सुबह आँख खुलती ही उसका मैसेज देखना और रात को उसकी आवाज़ सुनकर सोना मेरी रोज़ की खुशी बन गया था। मुझे लगता था कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, वो कभी नहीं जाएगी, लेकिन शायद मैं गलत था। धीरे धीरे उसकी बातें कम होने लगी। पहले जो हर छोटी छोटी बात मुझसे कहती थी, अब घंटों तक जवाब नहीं देती थी। मैं हर बार खुद को समझाता रहा कि वो व्यस्त होगी, लेकिन दिल जानता था वो दूरी बढ़ रही है। फिर एक दिन उसने सिर्फ इतना कहा, अब पहले जैसा कुछ महसूस नहीं होता, बस वही पल था जब मेरा दिल टूट गया। अजीब बात है ना, इंसान रोता उसके जाने पर नहीं, रोता उन सपनों पर है जो उसने उसके साथ देखे थे। आज भी उसकी याद आती है और आंखें भर आती है, क्योंकि उसने सिर्फ मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, उसने वो सारे ख्वाब भी तोड़ दिए थे जिनमें मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। काश कुछ लोग छोड़कर जाने से पहले एक बार ये भी सोच लेते कि उनके जाने के बाद कोई इंसान जिंदा तो रहेगा, मगर पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। क्या बात है दोस्तों। उस वक्त साढ़े कोल हो रहा है ने शायर, मेन बाजार पिंड चौको जला भटिंडा, बसंत सिंह टेलर बेटा लवदीप सिंह जस्सल जी भी ने, उन्होंने बेटे, ओके। लिख रहे ने कि कदों पिंड तू आवेगा, आ सीने नाल लावेगा, मुड़के ना जावेगा, सिर ते हथ रख कसम खावेगा। उस दिती उड़ीक है तेरे हिजर च चढ़दी रूनू, तेरी मिठी जही एक छूनू, आ कुट के जफी पावांगे। उस दिन दी उड़ीक है तेरे आउण दे दावे नू, मेरे नाल किते वादे नू, आके जदों निभावेगा, उस दिन दी उड़ीक है। अखां चो वग दे नीच नू, आके तू अखीर नू, अपने हत्था नाल सुकावेगा, उस दिन दी उड़ीक है। अपने बुझला जसलवे, आपे बुझला जसलावे, तेनू बोल के कुछ ना दसना वे, सामने बैठ मेरे चेहरे नू पढ़ पावेगा, बस उस दिन दी उड़ीक है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। वेल दोस्तों, आई होप जो दिल शायर प्रोग्राम चल रहा होंगे दोस्तों, दैन असी की करते हैं, असी ने एक डूंगाई च हमेशा एक चीज़

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, जहां वह सिर्फ बोलना नहीं जीना सीखता है। परिवार वह छत है जहां बचपन सपने देखते हैं, और वही नींव है जहां भविष्य खड़ा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, यानी परिवारों के भीतर और समाज में मौजूद असमानताओं के बीच बच्चों का शारीरिक और मानसिक कल्याण, बच्चों का विकास अच्छे भोजन और शिक्षा के साथ साथ एक सुरक्षित सहयोगी और भावनात्मक रूप से मजबूत पारिवारिक माहौल से भी जुड़ा होता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेष विशेषज्ञ मौजूद हैं।

0: डॉक्टर MS तोमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: और साथ हैं KR चटर्जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
0: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे परिवारों में मौजूद असमानताएं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर MS तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
1: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम, सुरक्षा, जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें है या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक

0: बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर MS तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
1: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम, सुरक्षा, जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें है या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग कितना निर्वहन कर रहे हैं। और संस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों में जो हम संस्कार देते हैं, वही जो हम बिहेव करते हैं, वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो जितना फैमिली का अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, उतना ही बच्चा के विकास पे असर पड़ता है परिवार का।
0: किया जी, आपसे जानेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें।
2: जी देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको अपने माँ से एक जुड़ाव होता है और वो अपने माँ के साथ रहता है, तो जब बढ़ता रहता है तो प्यार पनपता है। सो जैसे आज आपका टॉपिक है लव, सो उसमें भी बच्चा अच्छी तरह ही पनप जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ को या पापा को उनको जादू की झप्पी दे के या उनके साथ बैठ के उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उनको पास रखना होता है। जितना पास रखेंगे, जो फिज़िकल टच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मानसिक एज वेल एज इमोशनल। अब हम आते हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो जिन्होंने रिसर्च किया और एक बुक भी पब्लिश किया, 5 Love Languages ऑफ किड्स। उसमें क्या होता है, उन्होंने डिफाइन किया कि 5 Love Languages, जैसे कि ना कुछ बच्चों को गिफ्ट मिलना बहुत पसंद है, वो फर्स्ट हो गया उसका लव लैंग्वेज। फिर किसी को तारीफ करना पसंद है तो वो हो गया सेकेंड लव लैंग्वेज। फिर हो गया फिजिकल क्लोजनेस। फिर हो गया है कम्युनिकेशन, कैसे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। फिर हो गया है ख्याल रखना। तो ये 5 चीज़ें हो गए। तो जिस बच्चे का माँ को पता लग जाता है कि उस बच्चे का कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा फिफ्थ, उस हिसाब से बच्चों को प्यार देना चाहिए। अब वो तो बचपन की बात हो गई। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है बच्चा, तो उसमें उसके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, तो माँ को पापा को सारा टाइम एक बच्चों को एक माहौल देना है, एक उनको सेफ्टी नेट देना है कि बच्चे तुम्हारे लिए हम सदा पास में रहते हैं, तो बच्चा खुल के बात करेगा। ऐसे करते करते जब बचपन से माँ बाप का सपोर्ट रहता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ आता है उनका पढ़ाई का उच्च होने का इच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस, फिर सब कार्य में उनकी मन की इच्छा भी बड़ी होती है। फिर उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर स्पोर्ट्स से माइंड खेलता है। तो ऐसे करके मेंटल विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है,
0: मतलब मेंटल सिक्योरिटी मेंटली स्ट्रांग करती है बच्चों को।
2: एग्जैक्टली, तो एक बचपन से ही शुरू हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना नींव।
0: जी,
2: तो नींव से ही स्टार्ट करना होता है।
0: जी, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, नमस्कार जी, आपका
3: नमस्कार
0: नाम?
3: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: पहले इस सबसे बेहतरीन परिवार को मैं बधाई देती हूँ।
0: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू।
0: रेडियो डॉक्टर आपका परिवार है और आप भी इस रेडियो डॉक्टर का हिस्सा है।
3: मैं हिस्सा हूँ, पर मेरा सबसे प्यारा परिवार यही है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक तो मैं रेडियो फ्रीक हूँ, रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, टीवी मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर आपका प्रोग्राम मैं एक महीना कनाडा गई थी, बहुत मिस किया। तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई।
0: आपने मिस करा, अगर आप लोगों का कॉल नहीं आता तो शायद हम भी आप लोगों को मिस करते हैं। आप हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए प्रोग्राम में हर बार एक नया टॉपिक लेकर आए। तो बताइए मिसेस बेदी, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न सबसे पहले तो ये जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया ना, 5 प्यार के स्टेप्स बच्चों के लिए।
0: हाँ,
3: बच्चों की ग्रोथ आजकल इसलिए रुक रही है कि एक तो पेरेंट्स की आपस में ज्यादा अच्छे से नहीं रहते,
2: सही
3: क्योंकि जॉब में काफी डिफिकल्टीज आती हैं। अगर पेरेंट्स ही झगड़ेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल।
3: दूसरा, फैमिली में अब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, सबसे बड़ी ये कमी आ गई है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़िया ही नहीं। मेरी आपसे बस ये

0: रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज दुनिया जाने
1: जी,
0: और आपका मैसेज दूर दूर तक पहुंचे कि फैमिली बहुत जरूरी है, न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है।
2: जी हाँ, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि तो फैमिली लोगों कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज्यादा जरूरी है।
0: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी, इतना बढ़िया आप लोगों का कंसेप्ट है जो आज का है।
2: हम भी आपके लिए बहुत थैंकफुल, आप हमारे साथ, आपने कॉल किया, हमारे साथ जुड़े रेडियो डॉक्टर में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी केया जी ने कहा कि मानसिक विकास बच्चों के लिए कितना जरूरी है, ऐसे में अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें कि बचपन से ही उनकी ग्रोथ सही हो?
1: देखिए, हमारे एक कहावत है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कैसा बनेगा, वो उसके पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। तो पूरी फैमिली को इस पे ध्यान देना है। हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद सोचते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं, कई बार तो 6 महीने पर बच्चा हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, बल्कि जब से बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से आपको उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है, क्योंकि आपका जो हमारी लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज में, एक गोल्डन 1000 डेज कहते हैं हम इसको, 1000 दिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मदर का आपको पूरा ख्याल रखना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, उसकी डाइट को अच्छा रखना है, क्योंकि आधे से ज्यादा विकास बच्चे का पेट के अंदर ही हो जाता है, जो बच्चे के अंग बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसी को आपको कैरी ऑन करना है।
3: इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला ना, तो ये बच्चों का घर में एक माहौल अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना अपने पेरेंट्स से अब्सॉर्ब कर लेते हैं उनकी परेशानियाँ, जैसे कि आर्थिक परेशानियाँ हुए या नॉर्मल कोई भी ऑफिस रिलेटेड हुआ या मानसिक परेशानी, तो बच्चे वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनके बिहेवियर में आता है, जैसे वो झल्लाहट करते हैं या टीनेज टैंट्रम्स करते हैं, कुछ
1: बिल्कुल,
3: भी
1: बिल्कुल।
3: तो उस वजह से बच्चों को देखना होगा कि भाई माहौल अच्छा है तो ही वो अच्छी तरह कर पाएंगे।
2: माहौल से हम भी इस माहौल को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत
1: जी।

0: खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा। घर घर तभी लगता है जब परिवार में सभी सदस्य हों, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे कि एक कॉलर ने पहले हमसे लाइन पे कहा था कि आजकल माता पिता वर्किंग है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे में बच्चों के वेलबींग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ सही हो, वो हेल्दी हो? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं हेल्दी है, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, तो क्या किया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्दी होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन को देखें तो इसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। तो कोई बच्चे का वेट अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको इमोशनली कितना स्ट्रांग है बच्चा, सोशली वेलबींग है कि नहीं उसकी, तो इन सारे चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारे कॉलर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पेरेंट्स घर में झगड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए हम जो पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है, तो मान के चलिए आपके घर में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एग्जैक्टली आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, वो सारा आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। और जाने अनजाने में है, जो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। आपको झगड़ना है वो नेचुरल, आप अकेले में भी झगड़ सकते हैं, आपको एंगर को मैनेजमेंट करना है, और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा वो करेगा। बाकी मैडम आप बताइए, कुछ ऐड कौन करना चाहें इसमें?
0: हाँ किया जी, आप बताइए कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार का क्या रोल रहना चाहिए, कितना अपनापन उनको देना चाहिए?
2: जी देखिए, बचपन से ही बच्चों के साथ रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है, उनके साथ खेले, माँ बाप खेले उनके साथ, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको फील करवाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको बचपन से ही के ग्रैटिट्यूड का फीलिंग दिलवाना चाहिए कि जी थैंकफुल रहे बड़ों से, या जिनसे भी तुम मिल रहा है तुम्हें थैंकफुल रहे। फिर हम आते हैं कि थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तब जब वो स्कूल जाते हैं, तब उनमें एक पीयर्स प्रेशर के बोल भी बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो, उनके में उनमें एक अग्रेशन आता है, एंगर बिहेवियर आता है, उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि शांति से चीज़ों को सुलझाएं। वो कैसे कराएंगे? वो पहले तो जब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ रहा है, तो वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपने से ही संभल जाए। उसके बाद उनको समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि ये उचित है ये नहीं उचित है, ऐसे करके। उसके बाद एक दैनिक दिनचर्या पर टिके रहे, ताकि एक डिसिप्लिन लाए बच्चों में, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होएगा, माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उससे बच्चों का विकास में भी परिवर्तन आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है ना। उसके बाद जो परिस्थितियों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो परिस्थितियाँ फिर से ना आए, ये माँ बाप को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनको धुतकारे। क्योंकि जैसे माँ बाप, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ बाप जैसे करते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि नॉर्मल है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं, इस पर चर्चा विचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ठीक पथ पे जाना है। इसीलिए उन बच्चों के साथ समय बिताएं, फिर उनको जब बाहर ले जाए फिर प्रोत्साहित कीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ में, जैसे गाना हुआ, उसमें माइंड का बहुत ही असर होता है, फिर योगा हुआ।

0: और फिर मेडिटेशन हुआ, इन सब चीज़ों में जो नर्व्स होते हैं उनको सूदिंग मिलता है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एकांत कैसे रहा जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिर एग्ज़ाम्स में परिवर्तन आता है, ऐसे करके शुरू से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान रखे पेरेंट्स।
1: लेकिन आजकल जहाँ सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते खेलने के लिए,
0: क्योंकि उनके होमवर्क भी तो बहुत आते हैं और सारा इंटरनेट से ही आता है।
1: जी, तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनका शारीरिक विकास कैसे करें? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
2: देखिए, आजकल के खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों ही माँ बाप वर्किंग हैं, बहुत मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना। खास करके बच्चों को गुड क्वालिटी टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है, और टाइम पेरेंट्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम नहीं, एंगेजमेंट बच्चे के साथ बहुत कम हो रहा है। स्क्रीन बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस कि 2 साल से पहले, 18 महीने से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो खाना नहीं खाता,
0: हम
2: मम्मी को लगता है यस, तो उसको खाना खिलाने के लिए अक्सर मना करते हैं कि आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना है, लेकिन मम्मी कहती है सर मैं सिर्फ खाना खाते समय दिखाती
0: हूँ। एग्जैक्टली,
2: आपका बच्चा कोई डस्टबिन नहीं है कि आपने मोबाइल के थ्रू उसका मुंह खोला और अंदर खाना डाल दिया, वो खाना उसको हजम भी नहीं होगा, उसको कोई फायदा भी नहीं होना, वो कुछ सीख ही नहीं रहा उस खाने से, उसको टेस्ट को नहीं ले रहा बच्चा, सिर्फ मुंह में अंदर जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है 5-6 महीने से कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है, तो स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस बड़ी फिक्स हैं। आपको 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम आपको 1 आवर तक आपको देना है, 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है स्क्रीन और डिजिटल कंट्रोल, जो पेरेंटिंग कंट्रोल है वो आपको रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इतना सारी समस्याएं आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, खास करके हमारे क्लिनिक्स में बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, जिनका न केवल स्क्रीन की वजह से बल्कि जंक फूड को भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली टाइम से आप सलाह लें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है।
1: देखा जाए तो बचपन से हमने ही उनको आदत, फोन देकर एक आदत डाल दी।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: लगता है कि बाहर जाएंगे इस अच्छे एक जगह बैठे हैं फोन देख ले तो। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को
2: बिल्कुल फोन ना दे चाहिए, बिल्कुल डिजिटल फ्री जोन आपको डिक्लेयर करना है घर में कि जैसे आप जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ डिजिटल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए। आपका बच्चों का बेड है जहाँ पर आप सो रहे हैं वो बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए, वहाँ अलाउड ही नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पहले बिल्कुल आपको मोबाइल और टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छा लगता है बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं।
1: और बच्चों का जो खाली टाइम है उस पर फोन देने की बजाय बच्चों को बाहर वर्कआउट के लिए ले,
2: दिस इज द ओनली वे। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो मानता ही नहीं है, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बच्चों को आप बाहर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे बच्चा आपका मोबाइल छुएगा तक नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए स्पोर्ट्स के लिए।
0: लेकिन आजकल माँ बाप ही इतना फोन पे रहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माँ बाप जो गेमिंग में आते हैं
2: बिल्कुल,
0: और फिर बच्चे इतने छोटे होते हैं 2-3 साल से वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब एज अ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हम थेरेपी देते हैं बच्चों को, प्रॉपर थेरेपी।
1: उसमें क्या होता है थेरेपी में?
0: देखिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज, न्यूरो इज माइंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक हम जो बात करते हैं अपने माइंड के साथ, और प्रोग्रामिंग हम जैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं इतने सालों से। ठीक है, नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है कुछ ये टूल्स है, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसके माध्यम से हम एक पेशेंट्स को थेरेपी से ठीक करते हैं। इसमें हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उससे हम रिलैक्स करवाते हैं पेशेंट को। उसके बाद एक्सरसाइजेस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो बच्चा एक्सरसाइजेस थ्रू माइंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि नथीटा टाइम में होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है, उस टाइम में प्रैक्टिस कर करके वो ठीक होते हैं। बट ये भी पेरेंट्स का ही हाथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि एक रूल बनाना चाहिए, लेकिन जनरली पेरेंट्स बनाते नहीं है क्योंकि उनके कन्वीनियंस पे चलता है सब कुछ
1: जी।
0: तो अगर वो पेरेंट्स रूल बना दे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो एकदम बच्चा ठीक हो जाता है। तो जैसे
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें, हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, उन्हें क्या करना है। एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि अच्छी बुक्स दे देना, अच्छे उनके लिए मोबाइल या कुछ गेमिंग जो आजकल आते हैं वो दे देना, वो पेरेंटिंग नहीं है।
0: एग्जैक्टली
2: आपको ये सीखना है कि आपका रोल एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का रोल इतना होता है कि बच्चे को अच्छी लाइफ जीना कैसे सिखाना है वो आपको आना चाहिए।
1: देखा जाए तो अगर स्क्रीन टाइम

0: वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते हैं।
1: बहुत
2: एग्जैक्टली
0: तो
2: बहुत सारा फर्क पड़ रहा है इसका।
1: आप मानेंगे नहीं, बच्चे बचपन
2: 90% यस यस 90% प्रॉब्लम्स बच्चों की हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है जो कि मैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैडम आपने भी देखा होगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, वेपिंग में आ जाते हैं बचपन से, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं, बट एक बार अगर आ गए तो बस लाइफ तो गई।
0: तो बच्चों में एंग्जाइटी हो गई, वो शायद लोनलीनेस में चले जाते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते।
2: Yes,
1: उसके लिए भी हम NLP के थ्रू उनको थेरेपी देते हैं, तब वो सुधरते हैं। अदरवाइज और देखा गया है कि ये जो इंडिया में मानसिक अवस्था है वो कुछ अच्छी नहीं है। वो 5 करोड़ किड्स दे आर अफेक्टेड, पीड़ित है, और 80-90% जो पेशेंट्स है, मतलब प्रॉब्लम है जिनमें, वो चिकित्सा ही नहीं करवाते, कुछ सोशल स्टिग्मा के वजह से, और कुछ जानने ही नहीं खुद पाते हैं कि
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और ये सारा स्टार्ट होता है यही एग्रेशन से, फिर एंगर से, डिप्रेशन, बिहेवियरल डिसऑर्डर, और घर से ही तो शुरू होता है ये पहले।
0: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से, ये लिखते हैं नमस्कार, बच्चों को प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा ना स्कूलों में हो रहा है ना घरों में, तो क्या इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? डॉक्टर तोमर पहले आप बताएं इस पे।
2: देखिए
0: शारीरिक पूछ रहे हैं कि शारीरिक विकास
2: हाँ
0: कैसे
2: जी, हाँ
0: करें?
2: जी हाँ जी, ये कहानी पढ़ने से शारीरिक विकास होगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, बट डेफिनेटली बच्चे की मेमोरी अच्छी बनती है जब कहानी सुनते हैं, एक बॉन्डिंग बढ़ती है। अक्सर जो दादी माँ की कहानियाँ हुआ करती थी वो एक मैसेज भी देती थी कहीं ना कहीं, तो वो जो हम वैल्यू सीखते हैं परिवार से, तो वो कहानी के थ्रू ही हमें सिखाया जाता था। शारीरिक विकास के लिए तो आपको बच्चे को अच्छा खाना देना है, हेल्दी डाइट देनी है, बच्चे का जो खेलने कूदने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, और स्क्रीनिंग से आपको दूर रखना है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्क्रीन से हो रहा है बच्चों
0: वो
2: में।
0: स्क्रीन टाइम से बचने के लिए ही बच्चों को शायद कहानी पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रेरित कैसे करें।
1: हाँ,
0: तो इस पे किया जी आप क्या कहेंगे?
1: जरूर, इससे जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, माइंड को जाएगा वो आवाज़, तो सूदिंग इफेक्ट होगा नर्व्स में, ब्रेन के नर्व्स में होगा, और फिर वो बातों में फिर वो सब आता जाएगा, और फिर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक होता है बच्चों को, स्टमक एक होता है, वो पता लगता रहता है कि बच्चा ठीक से जैसे कि ना चल, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, ये सब मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं उससे पता लगता है। तो ये ज़रूरी है कि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं सभी स्टूडियो में आए एक्सपर्ट और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू। वो लिखते हैं स्कूल में इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है, इनका कोई काउंसलिंग होता है क्या, कृपया बताएं। थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड। तो क्या जी आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि काउंसलिंग की
1: ये तो होता है। हैप्पीनेस करिकुलम तो खूब ही चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री का जो भी है, कुछ करिकुलम्स है हर स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल्स में करते हैं काफी लोग,
0: बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, शायद पेरेंट्स की भी होती है कि वो बच्चों के
1: साथ का तो होता है। पीटीएम मीटिंग्स हम हर समय पहुंचाते थे सैटरडेज को।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं देवदत्त परसोलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू देवदत्त जी।
2: थैंक यू सो मच।
0: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मेरी दुनिया तू ही रे, हर माँ बाप को बच्चे को ये फील कराना ज़रूरी है कि मेरी दुनिया तू ही रे, जिससे एक परिवार में एक बॉन्डिंग दिखे। डॉक्टर तोमर, आप हमें बताइए कि बच्चे की बचपन से हर एज ग्रुप में ग्रोथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या कहाँ लैग कर रहे हैं, कैसे पहचाने?
2: देखिए, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी वेलबींग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज गोल्डन 1000 डेज, जो हम पहले भी आप डिस्कस किए थे। शुरू के 9 महीने का जो गर्भावस्था का समय होता है, और उसके अलावा जो 2 साल हैं, बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 90% उसी एज में हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि 2 साल के बाद बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा,

0: उसका बुद्धिमान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। आईक्यू लेवल जो होता है बच्चे का वो 2 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, 90% हो जाता है या मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, दोनों पे ही, शारीरिक और मानसिक विकास पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से गर्भ संस्कार जैसे एक कंसेप्ट आया था। जैसे आपने अगर सुना होगा तो जैसे अभिमन्यु था, पेट में से सीख के आया था, ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हुआ होगा या कुछ सीख के आया होगा। दैट वॉज ए टोटली एपिजेनेटिस, मीन्स वो कंडीशनिंग इस तरीके से किया गया कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वो आपको 9 मंथ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 महीने आपको मदर पे फोकस करना है, मदर को खुद अपने आप पे फोकस करना है, ताकि उसका बच्चा है अच्छे से ग्रो करे अंदर। आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता होगी जो कि प्रूवन है बहुत सारी स्टडीज में, कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, वो एक सीजरियन बॉर्न बेबी होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम, उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है। दैट्स इन प्रूवन थिंग। हमें इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स अक्सर फैमिली प्लानिंग करती नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी कोई प्लानिंग होती ही नहीं है, उसको कई सालों पहले से आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि आप एक हेल्दी बच्चा समाज को दे सकें। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद देखते हैं कि शुरू का जो 6 महीने का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नींव भरती है वो भरती है, चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो। उस समय 2 चीज़ें होती है बच्चे का, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो बच्चे को बाहर की बीमारियों से बचाना भी है हमको, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको पहली वैक्सीन्स कहते हैं, वो है माँ का दूध। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टडीज में ये प्रूवन हुआ है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। माँ का दूध केवल उसी समय पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि 100 साल तक के लिए, लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं आज के टाइम में, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारे कैंसर्स हैं, इन सब से आपको बचाना है बच्चे को, तो सिंपल है कि बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड, मींस माँ के दूध के अलावा आपको सपने में सोचना भी नहीं है कि कोई एक बूंद भी ऊपर से कुछ देना है। तो ये हमारा 6 महीने तक का टाइम हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिर से स्क्रीन अंदर आ जाती है, तो उससे वहाँ आपको बचाना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको देना है, किसी और की माँ का दूध आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, अक्सर माँ क्या करती है कि उसको गाय भैंस का या डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो उससे आपको बचना है। आप उसको खाना देना स्टार्ट करिएगा, माँ का दूध चलने दीजिए 2 साल तक के लिए, साथ साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से हम बच्चे को 2 साल तक डेवलप कराते हैं। उसके बाद फिर आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मम्मी को बजी लाइफस्टाइल हो गया है, सबको शॉर्टकट चाहिए, इतने सारे बेबी फूड आ गए, इसकी इंडस्ट्री देख कितनी बड़ी हो गई बेबी फूड की, एंड देर ऑल प्रोसेस फूड, दे आर ऑल जंक फूड, एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, दे प्रमोट ओबेसिटीज, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्शन होता है। अगर आपने कभी एक बार कुछ जंक फूड ले लिया, आपको घर का खाना बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो जंक फूड कभी भी, क्योंकि बहुत हाई शुगर होता है उनके अंदर, बहुत हाई सॉल्ट होता है, और जैसे ही बच्चा वो खाना खाने के बाद फिर घर का खाना खाता है तो उसको वो किक नहीं मिलती है, उसके ब्रेन में वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, तो बच्चा फिर घर में खाना खाता ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बच्चा और बड़ा होता है, उसके बाद आपको बच्चे को जितना हो सकता है उतना प्ले टाइम देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जब स्कूल जाने लगे तो आपको बच्चे को अच्छा प्ले टाइम देना चाहिए, इससे बच्चा स्क्रीन से ही बचेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैडम कुछ आप एड ऑन करना चाहें इसमें?
1: जी ज़रूर जी, बताइए कि जी कि कैसे बच्चों के, ये तो उन्होंने बताया डॉक्टर तोमर ने, शारीरिक विकास कैसे करें, आप हमें बताएं कि मानसिक विकास बचपन से बच्चे का कैसे करें कि जिससे वो बड़ा होते होते प्रॉपर उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए।
2: हाँ जी, देखिए जैसे ही बच्चा आ गया, बाहर आ गया जैसे बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को उनको पार्क में ले जाए, फिर पार्क में जैसे जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ जब रहेंगे बच्चों, वो अलग ही एक नेचर से इंट्रोडक्शन होएगा बच्चों का। सो ऐसे करते करते थ्रू आउट एवरी डे एक पार्क का हैबिट बनाइए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा, खेलेगा, नंगे पैर पार्क में चलेगा, ग्रास के साथ उसका ग्राउंडिंग होएगा, तो जो ग्रास के साथ उसका पैर में चलने से वो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। फिर बचपन से ही ट्राई करने के लिए कि योगा करें बच्चे, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के रूप में नहीं, साइलेंस प्रैक्टिस करें, बोले कि थोड़ी देर शांत रहो। तो ये शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 5

0: मिनट से करेंगे, एक हफ्ता 5 मिनट किया, 2 हफ्ता 10 मिनट किया, तो जब बचपन से ही करेंगे बच्चे तो उनको आदत लग जाएगी। फिर घर में देखेंगे कि प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से भी शांति मिलती है, जो इसेंस का जो खुशबू आता है उसमें भी एक आराम मिलता है नसों को, नर्वस सिस्टम को। फिर हम आते हैं, जैसे मैं साइको न्यूरोबिक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, वो है हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने बोला, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस प्रैक्टिस किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर हाई लेवल पे गए। तो जब जब जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम कूल होएगा और आप झगड़ा नहीं करोगे बड़े होके। आजकल क्या होता है, रोड रेजेस होते हैं, रोड रेजेस में क्या होते हैं, झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए घर का माहौल एक उचित देने के लिए माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता
1: जैसे
0: है।
1: जैसे अभी आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हो गया, झगड़ना शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड एक मैसेज हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, हाउ टू कॉम्बैट द टेम्पर टेंट्रम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
0: हाँ, इसमें मैं अच्छी तरह बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह थेरेपी में मतलब ठीक किया है कुछ बच्चों का। देखिए, जैसे ही बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, छोटा बच्चा भी बहुत हाइपर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बच्चे होते हैं, तो जैसे ही हाइपर हो जाते हैं तो एकदम पूरा माहौल शांत करते। ये नहीं कि पेरेंट्स उसी टाइम ही बच्चों को सब कुछ सीखते, नहीं, वो वेट करें जब बच्चों का क्रोध शांत होएगा। देखिए, एक थॉट जब आती है, वो थॉट शरीर में 3 घंटे से पहले नहीं जाती है, और वो थॉट शरीर में 60,000 से लेके 2 लाख तक थॉट्स पर डे एक इंसान को आता है। तो जब सोचिए, जब क्रोधित बच्चा या कोई भी क्रोधित जब होता है, तो वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि शांति से सुलझाएं। पहले भी मैंने बोला कि कहानियों के माध्यम से उनको समझाएं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाएं, लेकिन समझाना ज़रूरी है, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर बाद।
1: लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी शांत रहना जरूरी है। कई बार होता है पेरेंट्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, वो भी उनको डांटने लगते हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे। हाँ, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार
2: जी, मेरे 4 सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश।
1: हाँ जी बताइए।
2: तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक मुकम्मल परिवार किसे कहेंगे, क्योंकि कई फैमिली में 2 ही लोग रहते हैं, कई में 4 रहते हैं, कई में 8 रहते हैं, कई 15-20 भी रहते हैं, कुटुम्बदर भी अच्छी खासी रहती है। तो आप एक कम्प्लीट परिवार की परिभाषा मतलब किसे कहेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल होता है कि बच्चे माँ बाप तो बिल्कुल बिंदास बेखौफ होके बात करते हैं, कोई भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिमांड करनी है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको उनके सीनियर से कुलीग्स मिलते हैं, तो वहाँ वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं बच्चों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ पैर छूने चाहिए, उन्हें ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, उनके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। हम बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ सीनियर्स मिलते हैं, उनकी मजबूरी का शराबत का फायदा उठाते हैं, इससे हमें क्या करना चाहिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि संयुक्त परिवार जो है वो एकांकी परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील परिवर्तित, तो इसकी वजह क्या है। और पांचवी आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, गुजारिश आप सबों से, जैसे बड़े बुजुर्ग प्यार के भूखे हैं ना मान सम्मान के, ऐसे बच्चे भी हैं प्यार के भूखे मान सम्मान के, तो उन्हें मान सम्मान देना और उन्हें प्यार करना सीखे। क्या कहेंगे आप, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अच्छे परिवार की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे?
3: जहाँ स्नेह, संरक्षण, उत्तरदायित्व और संस्कार होते हैं, संस्कार में जैसे आपने बोला वो सब कुछ आ जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो जैसे बाहर बच्चे जाते हैं तो वो बिगी बिल बन जाते हैं, या वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक उसमें भावनात्मक उसमें आती हैं, ये यही वैल्यू हमें सीखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाना ये परिवार की जिम्मेदारी होती है। दूसरा आपने बोला कि रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, डेफिनेटली बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए होता है जितना बड़ों को चाहिए होता है। तो वो बच्चों को हमें सिखाना है कि उन्हें कैसे करना है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा हम करेक्ट नहीं करें, दिन भर हम बच्चे को करेक्ट करते रहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बल्कि उसको जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उससे आप सवाल करिएगा ताकि उसका

0: अपर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज क्या है कि दिन भर बच्चा वही सुनता है, आप ये मत करो, आप वो मत करो, तो उसका भी स्पाइन लेवल पर रिप्लाई आने लगता है फिर वो। तो उस तरीके से करना है, संयुक्त परिवार का होना बहुत जरूरी है। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इंसान आजकल जो है वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वो आसपास की चीज़ें फिर दिखाई नहीं देती हैं, तो वही हो रहा है। ये सही समय कि हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहिए, हमको अपने आसपास देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए, इससे हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों से मिलना चाहिए। बल्कि दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोज में तो हालत यह है कि ऊपर वाला नीचे वाले को जानता ही नहीं है कि वो कौन रहता है। इससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सोशल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
1: किया जी, जैसे इन्होंने एक ये भी पूछा था कि बच्चे घर में तो बिंदास डिमांड करते हैं लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे में उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए?
2: देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि बाहर दिखाना है कि हम बहुत ही सही है, और घर के अंदर वो अपने आप को नॉर्मली बिहेव करते हैं, और उनका नॉर्मल है कि वो जिद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ देयर नॉर्मल थिंग। बट बाहर तो दिखाना ही है कि हम इतने अच्छे हैं। तो ये सब कुछ शुरुआत होती है वो घर से ही, जैसे आपका घर का फैमिली का प्रोग्राम।
1: नहीं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं बोलते।
2: हाँ,
1: घर में तो बोलते रहते हैं लेकिन बाहर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। तो वो बाहर भी जैसे आजकल होते छोटी फैमिलीज है, ठीक है, बच्चे पोजेसिव हो गए, रिजर्व हो गए, बाहर उतने सोशल नहीं है, तो उनको सोशल कैसे बनाया जाए, वो ये पूछना चाह रहे हैं।
2: हाँ, तो उनकी पर्सनैलिटी क्लासेस होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को डालना चाहिए। फिर काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर हमारे जैसे NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके थ्रू से हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्प चाहिए कि अगर देख रहे हैं कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो घर पे नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोफेशनल उनको हेल्प लेना चाहिए।
1: लेकिन बच्चों को रिजर्व टू सोशल बनाने के लिए पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
2: पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ना, स्कूल के टीचर्स से मिल के, उनसे बात करके, उनसे डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग लेके, फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
1: एक श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। दोनों डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार ठाकुर साहब।
1: नमस्कार, नमस्कार जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न ये था, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना था।
1: जी बताइए।
3: जैसे मानसिक रूप का उससे आज ये प्रोग्राम था, तो ये मानसिक होता है या ऐसा, जैसे बिटिया हमारी 24 साल की है तो उससे पहले भी स्कूल से कि ये ऐसे हवा लग गई करके हो जाती थी, जैसा मूर्छित हो जाती थी, ये बेहोश टाइप की, या कभी कुछ जैसे डेथ केस हुए थे तो उसमें भी वो बेहोश हो जाती थी, जैसे कभी पूजा पाठ करती है तो कभी कभी उसमें उसको हो जाती है, बेहोश टाइप की हो जाती है, कि तब मानते हैं ना ये घर का कोई ऐसा कुछ दोष हो या कुछ ऐसा, या कुछ हवा या कुछ ऐसा, तो ये मानसिक होता होगा या क्या होता होगा, इसका तो समझ में नहीं आया।
2: मैं बताती हूँ, ये दोष वोष कुछ नहीं होता है, ये जो अफेक्ट होता है, शॉक मिलता है किसी की डेथ के वजह से, वो माइंड में चलता रहता है। जितना माइंड में चलेगा वो उतना ही दिखता, बड़ा और बड़ा दिखता रहेगा। तो आपके बेटी को थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इस वक्त, ताकि वो इस चीज़ से निकल आए। जैसे ही वो निकल आएंगे फिर वो घर के माहौल में फिर संभल जाएंगे, बट अभी के लिए आपकी बेटी को थोड़ा सा डॉक्टर का या किसी का, काउंसलर का, साइकोनोरोबिक्स होए या साइकोपैथ होए, उनसे हेल्प चाहिए।
1: इस पर डॉक्टर, इस पर के अजी मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कई बार होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड हो गया या कोई भी चीज हो गई, कुछ बच्चे होते हैं वो इमिडिएटली हैंडल कर लेते हैं।
2: हाँ जी।
1: कुछ होते हैं उसको एक दिन सोचते रहेंगे, कुछ होगा हफ्ते भर सोचते रहेंगे, कुछ महीनों सोचते रहेंगे।
2: हाँ जी।
1: उसकी वजह से वो चीज सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती, ना ही उसका रिजल्ट मिल पाता।
2: नहीं,
1: तो ऐसे में तो उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए?
2: देखिए, कुछ तो अपने में ही होता है, कुछ तो तूफानी बच्चे होते हैं, कुछ स्लो डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को डिफरेंट, जैसे कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू टीचर्स उनको हेल्प करेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि टीचर से बात करके, उनसे काउंसलिंग करके उन बच्चों को नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे ठीक हो रहे हैं और नॉर्मल रिजल्ट्स आने लगे।
1: इस पे डॉक्टर तोमर आप क्या कहेंगे?
0: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हर किसी के पास ना तो साइकेट्रिस्ट है ना ही डॉक्टर्स हैं, बल्कि आप देखें छोटे शहरों में तो हमें बेसिक किसी भी चीज़ के लिए, समाज को चलाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें आज हम इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने वो जो हमारा पुराना कंसेप्ट था

0: खो दिया। तो बच्चों को हमें एक सोशल लाइफ में करना, जैसे कहते हैं बच्चा, कुछ बच्चे बहुत वो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ हमें बचपन से बच्चों को सिखानी है। जैसे बच्चा होता है अपने परिवार में, दादा दादी नाना नानी भाई बहन जितने भी हैं उन सबसे मिलवाइए, उनसे बात कराइए, बच्चा अपने आप ही होने लगेगा। दूसरी चीज़ जैसे कि बहुत से बच्चे प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम सब कुछ बच्चे को सिखा देते हैं, ये खा लो वो खा लो ऐसे कर लो पढ़ाई कर लो, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते।
1: कि डिफरेंट स्पून फीडिंग करते
0: हैं, यस स्पून फीडिंग नहीं करना है बच्चे को अपने आप, इसको नर्चरिंग केयर कहते हैं बेसिकली हम, कि बच्चे को इनिशियली 5 ईयर्स तक तो एक्सपीरियंस करने दीजिए, उससे बच्चे को सीखने दीजिए, आप कुछ मत सिखाइए। आपने देखा होगा बेंगलोर में एक इंसिडेंस हुआ था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा था, शादी के बाद सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, सोशल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों पर बच्चे को तैयार नहीं किया। तो बच्चे को संस्कार से केवल एजुकेशन नहीं देना है आपको, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार करना है कि हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस।
1: कभी कभी हैंडल मतलब जो होता है ना, उसी सिचुएशन को हम सिखाए नहीं सकते हैं, वो अपने आप ही हैंडल करना होता है, और वो शुरुआत ही होता है नींव से। अगर नींव मजबूत होए तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकेगा।
2: लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी काम होगा तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं कर पाते
1: सब।
2: तो हाँ किया जी, वो कैसे करे कि क्योंकि बच्चों को बचपन से देखा जाए तो स्कूल भी जाना है, उनको खेलना भी है, उनके पास अपने ही बहुत काम है, तो वो हर चीज को आराम से हैंडल कर ले, उसके लिए क्या करे, पेरेंट्स क्या करे और बच्चे क्या करे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो,
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
2: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मैडम, मेरा सवाल ये है कि अगर आजकल के जो मदर हैं वो उनका खुद का ही लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसे ही है, डिसिप्लिन नहीं है, ना हेल्थी हाइजीन का है, बच्चा भी अगर देर से उठता है और देर से सोता है तो मतलब बच्चा भी है, मतलब ब्रेस्ट फीड पे भी है, तो क्या है, बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो यंग मदर्स एंड फादर है, अब ये है कि वो बड़ों की एडवाइस पर तो उनका कोई वो लेती नहीं है, मतलब दे डिपेंड ऑन इंस्टा रील्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से एडवाइस ले लेते हैं वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो ये मतलब बच्चे के लिए कितना मतलब डेवलपमेंट में मतलब बाधा कर सकते हैं
2: जी? पहले डॉक्टर तुम्हारा आप बताइए कि फिजिकल डेवलपमेंट पे कैसे बाधा करेगा?
0: दो चीज़ हैं सर, आपने जो बताया है कि पहले तो ये कि माँ है आजकल रील देखती हैं या इंस्टा पे है, तो एक चीज़ है हमारे यहाँ समाज में कभी भी पहले ये बैन हुआ करता था कि कोई भी किसी भी टॉपिक पर एडवाइज नहीं दे सकता, लेकिन अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब से आई है तब से कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ पे ज्ञान देने के लिए रील बना लेता है, उसे कभी भी फॉलो निकलना है, खासकर हेल्थ के बारे में आपको बिना एक्सपर्ट के सलाह के नहीं लेनी है। जो माँ है वो भी किसी का बच्चा रहा होगा, तो जब हम समाज को इस तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे वैल्यूज देंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी कल को जा करके माँ बनेगी तो उसको डेफिनेटली वो पता रहेगा। और जहाँ तक स्क्रीन का टाइम है, बच्चों की हेल्थ पर असर तो पड़ता ही है, प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और लाइफ साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो के और 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका हेल्दी स्लीपिंग हो गया, ये नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्लीपिंग पैटर्न एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। जो लाइफ है हमारी वो सन के अराउंड मूव करती है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो उसी के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी है।
2: इस पर क्या जी आप क्या कहेंगी?
1: हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी डॉक्टर साहब जी जो बोला कि ये बच्चे आजकल टाइम से नहीं सोते हैं और बहुत रात तक लैपटॉप पे काम करते हैं, इससे क्या होता है जो वो ब्लू लाइट्स आती है आंखों में स्क्रीन से, वो आपके सर्कैडियन साइकिल को अफेक्ट करता है। सर्कैडियन साइकिल क्या है? सोना और जगने का साइकिल। अब जब बच्चा 4 बजे सो रहा है, सपोज रात के 4 बजे सो रहा है, तो सुबह उठते हुए मुश्किल होगी, और जैसे ही मुश्किल होगी सुबह उठते हुए उसको नींद नींद ड्राउजीनेस फील होगा थ्रू आउट द डे, बट उसको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, काम तो करना है, तो ओवर द पीरियड वो सुस्त बनता जाएगा, लेजी लथार्जी आता जाएगा। तो ये माँ बाप को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है कि बच्चे तुम टाइम से सोओगे, टाइम से खाओगे, पहले जमाने के तरह, तो ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे तो ही बच्चे ठीक हो पाएंगे। तो माँ बाप पे फिर आ जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की आजकल बहुत ज़रूरी है, और इंस्टा पे तो आजकल सारे टाइप के रील्स ऐसे होते हैं कि एडिक्शन हो जाती है।
0: बिल्कुल
2: जी, इसी पर एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे? हेमचंद्र भट्ट,

0: असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य उत्तराखंड।
1: देखिए सर, लाइफ को चलाने के लिए आपको कोई डाइट चार्ट की जरूरत नहीं है। जो हमारी कल्चर में था, आपको सबको पता होता है कि हेल्दी फूड क्या होता है। स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, नेचुरल खिलाइएगा, प्रोसेस फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो अच्छे से खिलाइएगा और मानसिक रूप से उनको जो है सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा।
0: एक और मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, अगर बच्चे घर पर तो दंगा करते हैं लेकिन बाहर जाकर और ज़्यादा दंगा करते हैं और डिमांड करते हैं मोबाइल दो, इसके लिए क्या किया जाए, प्लीज़ कृपया निर्देशित करें। किया जी क्या कहेंगे, ये लिखा है डॉक्टर शिवराज सिंह ने।
2: बच्चे की उम्र क्या है ये बहुत जरूरी है,
0: ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो हाँ। अगर हम ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से 10
1: डेफिनेटली बच्चा कोई भी हो सकता
0: है। हाँ, कोई भी हो सकता है,
2: क्योंकि ज्यादा छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
0: दंगा करते हैं और बाहर जाके हॉर करते हैं,
2: हाँ, तो उनके जिद पे ना आए ना, यही तो है पेरेंटिंग।
1: बच्चे को जो है आपको शुरू से ही कंट्रोल करके चलना है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे को आपको पैम्पर नहीं करना है, आप बच्चे को संस्कार दे रहे। एक सिंपल सी, एक छोटी सी, आपको हमेशा याद रखनी बच्चों के मामले में कि बच्चा आपका कच्ची मिट्टी होता है,
2: ठीक,
1: और आप जो है कुंभकार हैं, आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कहाँ आपको अपने हाथ को टाइट करना है, कहाँ आपके हाथ को लूज करना है, कितना सुंदर शेप आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कच्ची मिट्टी हो गए हैं,
2: ठीक,
1: बच्चे उसको मोल्ड कर रहे हैं, जिद किया तो वो तो बच्चा आपका एडिक्टेड हो चुका है। बहुत से बड़े अडल्ट होते हैं, वो ड्रग्स के लिए जिद करते हैं, कोई ड्रिंक के लिए जिद करता है, तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा।
0: पेरेंट्स जहाँ इतना बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो हफ्ते में एक दिन क्या उनको बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्टिविटी करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए, डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए, अक्सर ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, और बहुत परेशान होते हैं अक्सर मम्मियाँ, तो उसके लिए सिंपल है कि जब भी आप बच्चों को खाना खाते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाना है, और अक्सर फैमिली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल डिजिटल फ्री एरिया होना चाहिए जिसमें आपको बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है। चलते चलते मैं एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र देकर जाता हूँ, क्योंकि एक परिवार होता है, परिवार सुखी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, तो उसके लिए हमारे बहुत पहले से एक कंसेप्ट हुआ करता है परिवार के लिए क्या जरूरी है, कि यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्त्रि तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, उसका मतलब ये है। तो घर में जो आपके लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चों की माँ हैं, दादी हैं, आप उनको प्रॉपर इज्जत देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, झगड़े कम होंगे, खुशियां रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे।
0: और क्या जी, आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते हमारे श्रोताओं को, जिससे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है और बच्चों के लिए, जिससे उनका मानसिक विकास सही ढंग से हो।
2: हाँ जी, बच्चों के लिए है कि बच्चे जो माँ बाप बोले वो करें, और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनल, उनकी सुने, उनके साथ रहें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ साथ सारे कार्य करें, ताकि बच्चे भी खुश रहे। और जादू की छप्पी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, इसे ही कहते हैं फैमिली बॉन्ड। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा होगा, आपस में प्यार होगा, तो सब आपस में खुश रहेंगे। श्रोताओं, अगर परिवार में संवाद, समानता और सहयोग हो, तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकता है। बच्चों का बेहतर कल एक बेहतर परिवार से शुरू होता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर MS तोमर और केया चटर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू। थैंक यू।
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हाँ जी दोस्तों जी, मैं तड़पना आरजे दोस्त रमनीश ते प्रोग्राम चल रहा है हेलो जलंधर। शुरू हो चुका है हेलो जलंधर, यानी कि बहुत सारे डाउट लेके मैं हाजिर हाँ। पहले साढ़े स्रोते एंट्री कराई जाए। हेलो
1: हेलो
0: सर जी, सत श्रीकाल जी। हाँ जी सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। की हाल ने जवाब दो जी पुछ लगा मैं। हेलो किते गवाच के सनी जी। हेलो मैं कह सनी जी। हेलो कोई गल नहीं, लगता मेरी सवाल तो डर गए पहले ही। वैसे कोई गल नहीं, देखो जी मैं सवाल पूछ लगा सी ना, ये तो मैंने अचानक पता लग गया तो सनी जी का फोन कट हो गया, नहीं तो असी तो मतलब सवाल कर देना सी तो अगले सरोते ने जवाब दे देना सी। कोई चक्कर नहीं, आप नवे सरोते की वेट कर लें, कोई चक्कर नहीं है, इधर ही कोई गल ही है नहीं जी। हैलो जवाब दो। वैसे मैं प्रॉब्लम च फस गया, मेरे एक मन च डाउट आया होया। वैसे बंदर दिखना बंद हो जाना थानू पता। जवाब पसंद आ, मतलब पता कि लगता है कि बंदर

0: वेल दोस्तों तू ही सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जलंधर ते मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश बहुत सारे डाउट्स लेके मैं दोबारा तो हाजिर ना पर हो तो पहला स्रोते दी एंट्री करा दी थी जावे वंस अगेन हेलो
1: हेलो रमनीश जी नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार की नाम तो अड्डा जी
1: मैं राम लोया शर्मा जी पिंड समराए जिला जलंधर तो बोल रहा जी।
0: क्या बात है जी राम जी मेरा एक पहले तो ये डाउट है तुसी ये दसो सारा नाम आप कला नाम क्यों नहीं बोलते नाम पूछा जे मैं पूछा ताडा एड्रेस की है फिर तुसी दसो जी मेरी हां जी एड्रेस है जी
1: महाराज इदा कर लिया जी एड्रेस पूरा रसीदा ही रेगुलर कॉल रहे पता लग जाए बंदे नु फलांदा बंदे पिंड चो बोलदा जी बंदा फलांदा बोलदा
0: अच्छा जी पूरी नाम बोल के बंदे दा मुंह थक जूगा जी
1: नहीं महाराज थकड़ा है नहीं कुछ भी चाह चू पी रही है बस तुहाडा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं
0: नहीं तुहानू तां प्रैक्टिस हो चुकी है राम लभाया जी अपना नाम बोलदे विद एड्रेस
1: हां जी हां जी
0: ता करके जी चलो कोई गल नहीं राम लभाया जी चाह पी लिए तुसी ये दसो हुण
1: बिलकुल बिलकुल।

0: दोस्तों तो इस सुन रहे प्रोग्राम हेलो जलंधर ते बैठ अपना आरजी दोस्त रमनीश वेल 99.0 ते जोड़ चुके ने एंट्री कराई जावे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, की हाल
1: है? बोल रहे गोपाल नगर जलंधर तो जी।
0: अच्छा जी, की है ट्रेन फट रही है? दसो पहले, तुसी इतनी काली काली पाई हुई है जी।
1: तो बस ट्रेन फड़ी सी, नाले मोबाइल नवा लेके आई, मैं कहा ट्राई करो शायद लग जावे।
0: क्या बात है जी, नवे मोबाइल दा नवा उद्घाटन सोहने तरीके नाल हो गया जी तुहाडा।
1: हां जी, दो मोबाइल सी, तीजा भी लाके देखो, मैं कहा तीजे दा लग गया
0: नंबर। ओ, तुहाडे नवे मोबाइल च लगा?
1: हां जी बिल्कुल,
0: नवे च ही लगना सी, अज संयोग ही ओदे सीगे जी।
1: पुराने
0: हो गए पर नवा चाहिए मेनु।
1: हां जी नवा ही है।
0: अच्छा, वो तो मैं कहना नवा चाहिए, पुराने दो पे लै लियो। चलो मुबारक पहला फोन दिया। प्रवीण जी की कहते अपने दिमाग च ना एक डाउट जहा मेरे फसिया हट नहीं रहा जी। कहते ना जी अपना बंदर जो बंदर होंगे जो बंदा आते कॉमन चीज की है
1: बंदर
0: ने खारिश।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी

0: इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बनाए, डैम इंडस्ट्रीज वर्गीय संस्थावां दी नींव रखी, मॉडर्न इंडिया दा फ्रेमवर्क भी तैयार किया, ते पंचशील ते विश्व शांति दा भी उन्होंने मैसेज दिता है सानू। उन्होंने दुनिया नू ये संदेश दिता कि ताकत सिर्फ हथियारां च नहीं, सबर ते सहयोग च भी हुंदी है। नॉन अलाइंड मूवमेंट असी पढ़ते आ रहे हैं, असी सुनते आ रहे हैं, ओहो उन्हां दी नींव सी, ओ उन्हां दी सोच सी, ते ये उन्हां दे दृष्टिकोण चो आया सी। असी उन्हां यादगार गल्लां जिवें मैं कहा सी, उन्हां नू चाचा नहरू का कह के आखदे सी निक्के न्याणे, ते असी भी काफ़ी फेमसली साडे पंडित जवाहर लाल जी नू चाचा नहरू कह के आखदे हाँ, ते असी अज उन्हां नू भी अज की सीख सकते हाँ असी उन्हां तो।
1: काव्या, तुहानूं पता कि उन्हां नूं चाचा नहरू क्यों कहा जांदा सीगा?
0: नहीं, क्योंकि उन्हां नू क्योंकि 14 नवंबर नू उन्हां दा बर्थडे आंदा सी।
1: हाँ नहीं, मैं दस्सदा, क्योंकि वो बच्चों नाल बहुत प्यार करते थे।
0: अच्छा, हाँ
1: तो
0: जी,
1: एक बारी वो स्कूल के बच्चों नाल मिलन गए, तो उन्होंने बड़ी सादगी नाल उन्होंने गल की बच्चों नाल,
0: क्या बात
1: तो
0: है।
1: बच्चों ने उन्होंने चाचा नहरू कहना शुरू कर दिता। तो
0: ओ
1: बाद ये नाम सारे देश में ही बच्चों वालों उन्होंने कहण लग पे,
0: मतलब
1: बच्चे
0: प्रदान
1: कहण
0: कर
1: लग पे।
0: देता,
1: तो वो अक्सर अपनी कोट ते एक लाल
0: गुलाब
1: गुलाब
0: ला के
1: लगाते
0: रखते
1: थे ना, वो
0: सी
1: कहते
0: जी।
1: कि फुल मनुख नू निम्रता अते सुंदरता दी याद दिवांदा है।
0: क्या बात है, असीं इन्हां तो आही सीख सकते हैं कि सानूं मतलब निम्रता नाल ते इन्ने उच्ची पोस्ट ते रह के भी सानूं हम्बल रहना चाहिए, सानूं धरती दे नाल जुड़िया रहना चाहिए, एक निम्र इंसान बने रहना चाहिए। साडी बोली विच वी उन्नी ही निम्रता होनी चाहिए है, ते सानूं अपने देश की भी सेवा इवें करनी चाहिए है। इवें ही अज असीं दोवें साडे देश नू सुधारन लई डेथ एनिवर्सरी है, असीं उन्हां नू सलाम करदे हाँ, साडा देश उन्हां नू सलाम करदा है, ते ये गाना उन्हां नू डेडिकेटेड है, ते असीं वापस आने हैं। तुसीं ट्यून इन रहो 102.7 FM।

0: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन NDA 2 2026 दी वैकेंसी 394 ते क्वालिफिकेशन 12th पास PCM जरूरी है तुहाडे लई एयरफोर्स जां नेवी विच भर्ती होने लई तुहाडी उम्र 16.5 साल तो लैके 19.5 साल मतलब तुहाडे मतलब 20 साल दे तुसी नहीं होने चाहिए कुछ महीनिया लाइक 6 महीने का तुहाडे तो फर्क होना चाहिए है। अखीरली डेट अप्लाई करन दी 9 जून 2026 है। फीस इसकी 100 रुपये है जनरली तो SC ST लिए बिल्कुल फ्री होएगी। तो इस दे विच स्पेशल है तुहाडी ओबियसली फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी होएगी मतलब तुसी जे बहुत ज़्यादा तेज़ भजदे हो तुसी फिजिकल फिटनेस विच लोंग जंप दे टेस्ट होंगे वो ये होएगा। तो जे तुसी इसलिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी फिजिकल फिटनेस ते हुणे काम करना शुरू करो।
1: तो दोस्तों बाकी गल्लां ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੀਏ।
0: ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਸੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ 1 0

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी एंड लव यू जिंदगी च थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों यू नो लव यू जिंदगी की है दस दें बिल्कुल दस दें दोस्तों। सब तो पहला सत श्री अकाल मेरे प्यारे सारे दोस्तों साथियों। ते कहंदे ना जिंदगी एक ऐसा सफर है जो हर रोज सानू कुछ ना कुछ सिखा जाती है। कदे हसाउंदी है, कदे रवाउंदी है, कदे थका दिंदी है, पर फिर भी असी कहंदे ना सवेर दी नवी आस नाल जिहड़ी है सानू इह जगा भी दिंदी है। तुसीं सोचदे होंगे तां बिल्कुल गल सच है दोस्तों। ते दोस्तों कहंदे ना पर फिर भी इक सवेर नवा आस नाल जिहड़ी जगा तां दिंदी है, पर इस सफर नूं मुस्कान नाल कबूल करन दा नाम ही है लव यू जिंदगी दोस्तों। कहिंदे जिंदगी हमेशा साड़ी मर्जी मुताबिक नहीं चलती दोस्तों, पर यह जरूर साड़ी सोच के मुताबिक सोहनी बन सकती है। कई बार असी छोटिया गल्लां विच उलझ के ना वड्डी खुशी गवा लेंदे हाँ, तो कई बार एक छोटी मुस्कान सारा दिन सोहना कर जाती है। लव यू जिंदगी सानू यही सिखाती है कि याद दिलाती है कि खुश रहने लई वड्डे कारण नहीं सही नजरिया चाहिए है। इशू उन्हां लई है जो हार के भी मुस्कुराउणा जाणदे ने, जो टुट के भी अपने आप नूं जोड़ लैंदे ने, उन्हां लई जो अज थके हुए ने।

पर कल तो फिर उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जिंदगी का जरा सब तो वड्डा होना रही है हर हालात विच अपने आप नाल खड़ा रहना। जिंदगी पूरन नहीं होंदी, पर हर दिन सानू पूरा बनन दा जड़ा है मौका देंदी है। कदे चाह दी चुस्की विच सकून मिल जाता है, कदे किसे अपने दी आवाज विच मिल जाता है, कदे पुराना गीत दिल नू छू लैंदा है, ते कदे खामोशी सब कुछ कह जाती है। वैल दोस्तों, गल्लां दा सिलसिला अगे वधांदे आ, ते पर उस तों पहला एक सोहना जिहा गाणा। ते अज बहुत सारे टॉपिक से गल करेंगे, बहुत सारे टॉपिक इसलिए लगे जो कि साढ़े शो का नाम है लव यू जिंदगी। दैन असी अज लव यू जिंदगी नू एक्सप्लेन करूंगे, लाइक लव उस तो बाद आंदा यू दैन जिंदगी। पर उस तो पहला एक सोहना या प्यारा गाना तुहाडे सामने पेश कर दा दोस्तों।

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों गल चल रही है लव यू जिंदगी दे, मतलब पर जो साड़ा प्रोग्राम है लव यू जिंदगी उहदे बारे ही असी उस चीज़ नू बयान करेंगे। असल च बहुत ही कहिंदे ने कि महत्वपूर्ण गल है कि लव यू जिंदगी। लव तो मतलब तुसीं समझ गए होंगे प्यार। हुण आपां जे इस नू तोड़ दिए लव यू जिंदगी नू ते सिर्फ आपां गल करिए सिर्फ प्यार दी, यानी कि लव। हुण प्यार की होंदा है? प्यार तो वैसे ना आपां मतलब इनफिनिटी ही कह सकते हैं कि आपां किसी नू नहीं दस सकते असी किन्ना प्यार करदे उस नू, ते उह सानू नहीं दस सकता कि वह किन्ना प्यार करदा। हाँ असी एक दूसरे नू जरूर फील करवा सकते हैं, एहसास दिला सकते कि असी तेरे नाल किन्ना प्यार करदे हाँ दोस्तों। ते ही बस प्यार नू जिहड़ी ना उहदी डेफिनेशन आपां जे समझ लईए हर बंदे दी कहिंदे ना मन ली मन विच, ते प्यार दी डेफिनेशन अलग है। क्योंकि वो क्योंकि ना हर बंदे दा प्यार करन दा जिहड़ा नज़रिया है ना वो बहुत अलग है। कुछ बच्चियां वांगू प्यार करदे ने ते कुछ करदे ने अपने हिसाब नाल, भावें वह मैच्योरिटी वाला प्यार होवे, भावें वह ज़्यादा ख्याल रखने वाला प्यार।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहे लव यू जिंदगी दे मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीत ते तुसी सुन रहे एफएम 102.7। दोस्तों वेला हो चुका है हुन प्रादेशिक खबरां दा ते कुछ ही पला विच तुसी हुन सुनोगे प्रादेशिक खबरां 6:20 ते उस तो बाद असी इस प्रोग्राम नू कंटिन्यू रखांगे अगे गलबात करांगे दोस्तों।

दोस्तों तो सुन रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी ते मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश। दोस्तों गल चल रही है लव यू जिंदगी दे, लव दी गल असी कल ही हुण असी गल करांगे यू यानी कि तू। तू शब्द दा फलसफा, तू सिर्फ एक कहिंदे ना सर्वनाम नहीं, यह रिश्ते अपणत अते होद दा शीशा है।

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी। ते दोस्तों हुन जिंदगी दी गल कीती ते जिंदगी बारे ना आपां के गल कर ही लिए, क्योंकि साडा जिहड़ा आखरी वर्ड है जिंदगी। कहिंदे ने जिंदगी सिर्फ साह दा चलना नहीं, यह एक सफर है जो पैदा होने तो मरण तक चलता है। पंजाबी फलसफे विच जिंदगी नू जीवन जांच कहा गया है, भाव जीण दा ढंग सीखना। यह शब्द सानू तीन वड्डे सबक देंदा है, कदर, करम ते स्वीकारता। पहली गल करते हैं कि जिंदगी एक इमानत है, तोहफा नहीं। असी अक्सर कहने हाँ कि मेरी जिंदगी, पर गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं जो तद पावे साई पलीकार, भाव जिंदगी साड़ी मिलकियत नहीं, रब की अमानत है। जिवें किसी नूं सानू एक बाग संभालन लई दिता होवे, असी उस विच फुल भी ला सकते हाँ, कंडे भी। तोहफे नूं असी अपनी मर्जी नाल वरतदे हाँ, पर अमानत दा हिसाब देना पैंदा है। इसलिए जिंदगी दे हर पल दी कदर करनी ही इसका पहला फलसफा है। दूजी गल है दोस्तों, जिंदगी सवाल नहीं जवाब है। लोग पुछदे हन जिंदगी दा मकसद की है। सूफी फकीर बुल्ले शाह कहंदे हन, पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदे अपने आप नूं पढ़िया ही ना। जिंदगी खुद एक सवाल नहीं, सगो सवाल दा जवाब है जो असी रोज अपने कर्म नाल देंदे हाँ। जे तुसी किसे रोंदे नूं हसा दिता तां तुहाडी जिंदगी दे मकसद पा लिया। जे तुसी किसे भुखे नूं रोटी दे दित्ती तां जिंदगी ने अर्थ पा लिया। मकसद लभना नहीं बनाउणा पैंदा है दोस्तों। तीसरी गल है कि जिंदगी विरोधा दा मेल है। दिन रात खुशी कमी मिलन विछोड़ा, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। जे सिर्फ खुशी होवे तां असी उसकी कीमत ना समझिए, जे सिर्फ दुख होवे तां असी टुट जाइए। शिव कुमार बिटालवी लिखते हैं कि एक खुशी दे पिछे 100 गम लुके होंदे ने। यह विरोध ही जिंदगी नू संतुलन देंदे हैं। सर्दी तो बाद बसंत आती है, यही उम्मीद जिंदगी है। दोस्तों आखिरी है, जिंदगी मौत नाल मुकम्मल होंदी है। असी मौत तो डरते हाँ, पर मौत ही जिंदगी नू कीमती बनाउंदी है। जे पता लग जावे कि असी कदे नहीं मरना तो शायद असी कदे जावांगे ही नहीं ते जीवांगे ही नहीं। मौत दा डर ही सानू प्यार करना, माफ करना ते मेहनत करना सिखाउंदी है। इसलिए मौत जिंदगी दी दुश्मन नहीं, उसकी सहेली है। सिट्टा ही है दोस्तों, जिंदगी शब्द सानू सिखाउंदा है कि यह एक नदी वांग है, रुकेगी

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar

0: info@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं था अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल, कुछ समय रह गया है दोस्तों साढ़े इस प्रोग्राम ली, ते आखिर विच एक एहो जी कहानी सुनाना चाहूँगा जो कि मेरे दिल दे बड़ी करीब है, ते थानू आई होप बहुत चंगी लगेगी। फिरोजपुर जिले के निक्के जिहे पिंड महल कला का नाम तुसी शायद ना सुनया होवे। 2005 तक इस पिंड की पछाण सी, वह पिंड जिथे बस नहीं रुकती। कारण पिंड नूं जांदी 3 किलोमीटर कच्ची सड़क, बरसातां विच चिक्कड़, गर्मियां दे विच धूड़, मरीज़ मंजे ते ही दम तोड़ जांदे सन क्योंकि एंबूलेंस पिंड तक पहुँच ही नहीं सी सकदी। इस पिंड विच रहिंदा सी करतार सिंह, ना कोई लीडर ना सरपंच, सरकारी प्राइमरी स्कूल का चौकीदार, तनखा 4200 रुपये महीना, उम्र 52 साल, घर विच पत्नी दे 2 धियां। लोग उसनू मास्टर कहंदे सन क्योंकि वह स्कूल दे ताले तां लाउंदा ही सी, नाल जिहड़े ने वेले समय बच्चों नू पहाड़े भी याद करवा देंदा सी। 2003 दी गल है, करतार दी छोटी धी वीरपाल नू रातों रात 104 बुखार हो गया। करतार उसनू चुक के कच्चे राह तुर पिया। पिंडों बाहर मुड़ सड़क तक पहुँचद्या 1 घंटा लग गया। जदों अस्पताल पहुंचे डॉक्टर ने कहा 15 मिनट होर लेट होंदा तां बच्ची नहीं सी बचदी। उस रात करतार बस इन्ना ही बोलिया, यह सड़क मेरी धी नूं खा जांदी। अगली सवेर वह पिंड दे लोकां कोल गया, कहा आओ रल के सड़क पक्की करिए। सब ने हस के जवाब दिता, मास्टर तेरा दिमाग हिल गया है, सड़क सरकार बनाउंदी है असी नहीं। सरपंच ने कहा फाइल चंडीगढ़ पई है, मंजूरी आऊगी तब बनू। वह मंजूरी 1998 तो आ रही सी। करतार ने बहस नहीं कीती, उसने अपना साइकिल चुकया ते पिंड 12 किलोमीटर दूर एक पट्ठे ते पहुंच गया। पट्ठे दे मालक नू कहा कि मैनू टुटियां इट्टां दा जड़ा है खराबा दे दिओ, पैसे नहीं दे सकदा पर हर एतवार तुहाडी मुंशी दे बच्चे नू मुफ्त पढ़ा देवांगा। मालक मन गया। हुण हर एतवार सवेरे 4 बजे करतार साइकिल दे पट्ठे दे आंदा, यानी कि पिछे करियर दे टुटियां इट्टां बणदा ते इक्को इक करके पिंड दे राह ते विछाउंदा। इकल्ला ना कोई ट्रैक्टर ना मजदूर, पिंड वाले लंघदे मजाक करदे, मास्टर सड़क बनी के नहीं। ओह हस के कहिंदा, जिथे मेरा साइकिल लंघ गया उत्थे सड़क बन गई। दोस्तों ये कहानी नू अगे कॉन्टीन्यू रखांगे आपां, पर उस तो पहले एक जरूर सोना जगह ना आपां सुणदे आं, उस तो बाद ये कहानी आपां इस नू खत्म करांगे ते इसी तरीके नाल अपना शो भी आपां जरूर इसी एंडिंग करांगे।

7 MHz आकाशवाणी ते एक होर प्यारा जिहा गीत। दैन फिर उस तो बाद वीरू देवगंजी बारे होर बारे गलबात करांगे, एंड उस तो बाद एक होर प्यारी जी अदाकारा बारे भी गलबात करांगे। बने रहो मेरे नाल 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते। मैं थोड़े मित्र आरजे परविंदर।

नमस्कार, राधे वाजगने 8 ते पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जनतक वंड प्रणाली अधीन राशन आवाजाई और प्रबंधन सहायता लई इक योजना सार्थक पीडीएस नूं जारी रखण नूं प्रवानगी दित्ती है। सर्वोच्च अदालत ने आज चोण कमिशन वालों करवाई गई वोटर सूचियां की विशेष तीव्र सोध SIR की प्रक्रिया की वैधता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश के वख-वख हिस्सों के विच वध रहे तापमान के मद्देनज़र लोगों को सावधानी वरतण की अपील की है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कल लू चलण तो बाद मौसम च तब्दीली की पेशीनगोई की है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने बीते दिन विआह समागम दौरान खाना खाण पिछों बीमार हुए व्यक्तियों को सिविल हस्पताल मूनक च दिते जा रहे इलाज का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को सारे प्रभावित व्यक्तियों लई तुरंत इलाज यकीनी बनाने के निर्देश दिते ने। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने संबंधित अधिकारियों को सबका सैनिकों लिए रुजगार और बेहतर मौके प्रदान करने के निर्देश दिते ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 प्रीख्या पेपर लीक मामले के 3 होर मुलजमान गिरफ़्तार किया। भारतीय फौज ने हवाई सेना ते होर स्थानक एजेंसियों नाल तालमेल करके कसौली के पछमी ढलाणा विच लगी एक वड्डी जंगल की अग ते काबू पाया। प्रसिद्ध निशानेबाज 5 बार के ओलंपियन ते भारतीय ओलंपिक्स एसोसीएशन के सबका ऑनरेरी जनरल सकत्तर राजा रणधीर सिंह का अज लंबी बीमारी तो बाद देहांत हो गया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करदिया 5 मुलजमान 8 आधुनिक पिस्तौलों और कारतूसा समेत गिरफ़्तार किया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मोहाली विखे एलमीनेटर विच सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के नाल हो रहा है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ 102.7 MHz ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ।

हाँ जी, ये यार FM रेनबो, तो मैं थोड़ा बेहतर RJ परविंदर लैके हाजिर हो चुके हैं जी। प्रोग्राम केड़ा? हाँ जी, दिन है बुधवार दा, तो अज की हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हो तुसी, क्योंकि फिल्मी दुनिया प्रोग्राम तो बाद अज है दिन 8:03 हो चुके ने, तो अज है दिन बुधवार दा, तो बुधवार नूं अज दा दिन हुंदा है साडे सारयां नूं जो समर्पित। एंड तुसी बड़े अद्भुत आप दे नाल इस प्रोग्राम नूं सुणदे हो, तो प्रोग्राम जिथे तुसी सुणदे हो उस फिल्म प्रोग्राम दा नाम की है? जी हाँ, इन्फो टाइम्स प्रोग्राम दे विच तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। मैं तुहाडा मित्र RJ परविंदर सारयां दा इस्तकबाल करदा, क्योंकि अज असी इस दे विच जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इदा दी लैके आए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो चुकिया ने, गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आउटिंग कर रहे होंगे, घरों जा रहे होंगे, कोई नानके जा रहे, कोई दादके जा रहे, कोई अपने कितने होर भी घूमन जा सकता, यानी कि हिल स्टेशन से जा सकते हो, ऋषिकेश जा सकते हो, राफ्टिंग कर सकते हो, बंजी जंपिंग भी कर सकते हो, पर ध्यान दे नाल, एंड उस दे नाल तुसीं बहुत सारिया चीज़ा एडवेंचर्स भी कर सकते हो, मैमरीज लैके आ सकते हो, एंड खबरां भी बहुत सारिया ने, घूमन वाली चीज़ा भी बहुत सारिया दसागा, टूरिस्ट स्पॉट भी दसागा, होर बहुत कुछ दसन लिए। फिलहाल तुसे बने रहो मेरे नाल 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर के उत्ते। प्यारा जहा गीत भी लैके आ रहा हाँ थोड़े नाल साझा करन दे लई, उस दे नाल की करना तुसी ट्यून किया होया ना 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर के उत्ते, तो थोड़ा मित्र RJ परविंदर इन्फो टाइम्स के इन्फॉर्मेशन के नाल नाल थोड़े नाल गाने भी साझे करेगा, थोड़े नाल गल्लां बातां भी करेगा। की करना है, ट्यून किया होया बस टेक के काम करी जाओ, रेडियो भी सुनो, एंड उस दे नाल तुसी गाना ट्यून करो। मैं थोड़ा मित्र RJ परविंदर, आ सुन लो हनी सिंह साहब की कह रहे हैं।

हाँ जी, 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर उत्ते गाना खत्म होया, प्रोग्राम हले भी चल रहा है, मैं इतें ही मौजूद हाँ। तो एंड तुसी करना की है, ट्यून किया होया ना, बस एंटरटेन करना मेरा काम है, तो तुसी डटे रहना, तो मैनू सपोर्ट करनी है, रज के सपोर्ट किनू करनी है, 102.7 MHz आकाशवाणी।

नमस्कार, रात 9:00 ते पेश नेफ कुआर, फिर तो एफएम न्यूज हेडलाइंस। आर्थिक मामले बारे कैबिनेट मंत्री ने जनतक वंड प्रणाली पीडीएस नू आधुनिक योजना बनाउण नू मार्च 2031 तक जारी रखण लई प्रवानगी दे दित्ती है। सर्वोच्च अदालत ने चोण कमिशन वालों करवाई गई वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध एसआईआर दी प्रक्रिया दी वैधता नू बरकरार रखिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज नीट यूजी 2026 दे पेपर लीक मामले दे विच 3 लोक होर लोकां नू गिरफ्तार कीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की तरक्की लई उत्तर पूर्वी खेत्र का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध निशानेबाज 5 बार दे ओलंपियन अते भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन दे सबका ऑनरेरी सकत्तर जनरल राजा रणधीर सिंह दा अज लंबी बीमारी तो बाद देहांत हो गया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कल लू चलण तो बाद मौसम च तब्दीली दी पेशीनगोई कीती है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने बीते दिनी विआह समागम दौरान खाना खाण पिछों बीमार होए व्यक्तियों नूं सिविल हस्पताल मूनक च दिते जा रहे इलाज का जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों नूं सारे प्रभावित व्यक्तियों लई तुरंत इलाज यकीनी बनाउण दे निर्देश दिते ने। कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने संबंधित अधिकारियों नूं साबका सैनिकां लई रुजगार के बेहतर मौके प्रदान करन दे निर्देश दिते ने। अमृतसर कैबिनेट पुलिस ने सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। 5 मुलजमान नूं 8 आधुनिक पिस्तौलों और कारतूसों समेत गिरफ्तार किया है। IPL दे विच अज मोहाली दे न्यू चंडीगढ़ विखे एलीमिनेटर मैच विच सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स दे नाल हो रहा है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ।

हाँ जी, 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते रेनबो चैनल दे उत्ते प्रोग्राम चल रहा है जी दिल चाहता है जी। पिंड मूलेवाले तो जिला फाजिलका के तो कहते हैं प्यार भरी नमस्कार 55 साल तो पुराना श्रोता विनोद काठपाल जी, प्रवीण काठपाल साहब, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जन्नत काठपाल कहते हैं फिल्म सरपंच का गीत सुना दो कोठी बनवा दे। सो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर के रेनबो चैनल के उत्ते इन्हों की फरमाइश प्ले कर दें जनाब।

हाँ जी, 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर के रेनबो चैनल के उत्ते सानू अगली फरमाइश जड़ी पहुंची है। कह रहे हैं पदमपुर सिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा जी, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा जी, मूवी जनता हवलदार, तेरी आंखों की चाहत में मैं सब कुछ भुला दूंगा। सो आइए जी, इनकी फरमाइश को प्ले कर देते हैं जनाब।

107.7 MHz आकाशवाणी जलंधर ते रेनबो चैनल ते सानू अगली फरमाइश जड़ी मिली है। कह रहे ने प्रविंदर जी सुप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए फिल्म कटी पतंग से गीत किशोर कुमार जी की आवाज में, नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा जी धन्यवाद। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फरमाइश भेजने के लिए जी।

नमस्कार। 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है शाम गजल। कहते हैं कि हजार दर्द शब आरजू की राह में है, कोई ठिकाना बताओ कि काफिला उतरे करीब और भी आओ कि शौके दीद मिटे। नगमे और सुनाओ कि कुछ और नशा उतरे। 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गजल।

कहते हैं कि कोई सबब से अगर बोलता, इसी सबब से अगर बोलता नहीं हूँ मैं, तो यूँ नहीं कि तुझे सोचता नहीं हूँ मैं। कहते हैं कि कई बार होता है कि बहुत बार चाहत अधूरी रह जाती है, या आप जिसको चाहते हो उससे मुलाकात अधूरी रह जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ चाहत ही रह जाती है। काश अगर मुलाकात हो जाती, काश यदि उनसे हमने कुछ बात की होती, तो आज कुछ बात और होती। सिर्फ आंखों से बातें होती रहीं, फिर वो आंखों से ही ओझल हो गए, फिर उसके बाद मुलाकात का वक्त ही नहीं लगा। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल, शाम ए गज़ल।

कहते हैं कि हजार तरह के थे रंज पिछले मौसम में, हजार तरह के रंज पिछले मौसम में थे, पर इतना था कि कोई साथ रोने वाला था। कई बार कुछ वो लम्हे वो जज्बात गुजर जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता था।

वक्त पे आप कुछ और करना चाहते हैं और वक्त आपसे कुछ और करवा देता है, और सामने जो होता है हम उसे पहचान नहीं पाते, और अक्सर यही कहा जाता है कि जो किस्मत में हो वही प्राप्त है, वही पर्याप्त है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गजल।

कहते हैं कि जहाँ एक शख्स मिलता नहीं है चाहने से, वहाँ ये दिल हथेली पर जमाना चाहता है। कई बार आप बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं या बहुत कुछ पाने की चाहत रखते हैं और आप ये सोचते हैं कि और आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। कई बार तो ये सच साबित हो जाता है, पर हर बार नहीं हो पाता। और तमन्ना पूरी हो और ज़िंदगी में पूरी ना हो, अक्सर ये देखने को मिलता है। और कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही होती हैं जो ज़िंदगी जीने का हमें सबब देती हैं। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल शाम गज़ल।

नमस्कार। रात के 10:30 हो चुके हैं और कार्यक्रम आपने ट्यून किया हुआ है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तक आकाशवाणी जालंधर का चैनल और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि हमने उन्हें कितनी बार चाहा और कहते हैं कि बेवफा से दिल लगा के रो पड़े, दिल पे हम एक चोट खा कर रो पड़े। जिसने पूछा हमसे बिछड़े यार का, उसको सीने से लगा कर रो पड़े। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल कार्यक्रम चल रहा है। एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि जब से तूने दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि अपनी ना अपनी ना अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। कहते हैं कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, जिंदगी में एक हादसा ज़रूरी है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि चांदनी रात बड़ी देर बाद आई है, लब पे एक बात बड़ी देर बाद आई है, आज की रात वो आए बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर बाद आई है। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जालंधर का यह रेनबो चैनल एक प्यार का नगमा है।

नमस्कार FM Bandex 2.7 MHz आकाशवाणी दे जलंधर दे रेनबो चैनल तो तुसी ट्यून कीता होया जी। प्रोग्राम सुन रहे से तुसी प्यार का नगमा है, मैं तुहाडा मित्र आरजी परविंदर। अज दी सुबह दे साडे सारे प्रोग्राम समाप्त हुंदे ने, कल फिर तुहाडे नाल सवेरे 5:55 ते होवेगी मुलाकात। साडे आरजीज हुण के तुहाडी सेवा दे विच हाजिर, तद तक लई सानू दिओ इजाजत। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।